वेणुधुनी 90.4 के LE कनसू पे आप ट्यून है। यादों के बारात हमारा प्रोग्राम चल रहा है और अगला गाना मैं आपको सुनवाने जा रही हूँ जो है हीरो मूवी से। 1983 में ये मूवी आई थी जो बहुत ही सुपरहिट रही। इसके गाने भी बहुत ही खूबसूरत है। इसी में से एक गाना हम सुनेंगे जो है तू मेरा हीरो है।

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे जब कोई बात बिगड़ जाए। यह है जुर्म मूवी का गाना और विनोद खन्ना और मीनाक्षी शेषाद्री का अभिनय। कुमार सानू की आवाज में अगला गीत आपके लिए।

रहे सारी रात हम। किशोर कुमार और लता मंगेशकर जी की आवाज में एक खूबसूरत सा नगमा जो है आपकी कसम से, 1974 की मूवी है, तो चलिए सुनते हैं प्यारा सा गीत जो फिल्माया गया है राजेश खन्ना

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे पैसा सावन मूवी से। ये मूवी आई थी 1981 में। गाना है मेघारे मेघारे। लता मंगेशकर और सुरेश वाडकर जी की आवाज में अगला सॉन्ग आपके लिए, जो फिल्माया गया है जितेंद्र और मौसमी चटर्जी के ऊपर।

प्रार्थना अभवत। इस हफ्ते में हम एक गाने का आधार लेकर संस्कृत सीख रहे हैं। आज हम गाने का दूसरा पद गाएंगे। गाना देशभक्ति से ओतप्रोत है। गाना सुनते सुनते आप गाने लगेंगे और संस्कृत सुनते सुनते संस्कृत बोलने लगेंगे। आगच्छन्तु संस्कृतं श्रुण्मः संस्कृतं वदामः। अद्य सहायिका रूपेण मया सह मम सखी मञ्जरी भगिनी अस्ति। गीतस्य द्वितीयं पदं गायामः।

0: भक्तिमय सकाळमध्ये पुन्हा एकदा स्वागत आहे. केएल वेणुधोनी 90.4 एफएम वरती तुम्ही ट्यून इन आहात आणि आता आपण आध्यात्मिक विचार ऐकू.
1: सत्यता का महत्व. जो पल भर में कहीं बात बदल देता है या फिर दिए हुए वचन से टल जाता है, क्या ऐसा व्यक्ति कभी जीवन में सफल होता है? नहीं नहीं, कदापि नहीं. ऐसी व्यक्ति पर तो कोई भरोसा ही नहीं करता. लेकिन जो प्राण देकर भी वचन निभाता है, वो ही इतिहास में अमर हो जाता है. सच तो ये है कि सत्य का कोई मोल ही नहीं. सत्य अर्थात अविनाशी, न बदलने वाला. जो बात बात में बदल जाता है, उसे सफेद झूठ कहा जाता है. कुछ समय तक जिसका अस्तित्व है, जो विनाशी है, वो भी झूठी होता है. जब झूठ फरे पैर पसारने लगता है एवं सच का दमन होता है, तो सहसा मन डगमगा जाता है, निराशा बढ़ जाती है और सच्चे व्यक्ति के पग भी असत मार्ग की ओर मुड़ने लगते हैं. लेकिन याद रखे, सच की नैया हिलती है, डोलती है, लेकिन डूबती नहीं. वास्तव में सत्यता में बड़ा बल होता है. झूठ से सदाकाल की प्राप्ति व विजय नहीं मिलती, लेकिन सत्यता की ताकत से ही अंतिम जीत होती है. इससे सिद्ध है कि ये वो महान अद्भुत शक्ति है जो हमें जीवन संग्राम में विजय श्री का हार पहनाती है. इसलिए तो कहा है, सत्यमेव जयते. जो सत्य के मार्ग पर चलता है, भले ही उसे सहन करना पड़ता है, सत्य को परेशान होना पड़ता है, लेकिन वो कभी परास्त नहीं होता. भले ही वो अकेला हो, लेकिन अगर सत्य पर अड़िग रहे तो अंततः यश का अधिकारी भी बन जाते हैं. राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने सत्यता का दामन थामा और 150 वर्ष के अंग्रेजी हुकूमत को सत्याग्रह के शक्तिशाली शस्त्र से पराजित कर दिया. सच पूछो तो अंतरात्मा की आवाज है सत्य, जिसको दुनिया की कोई भी ताकत दबा नहीं सकती. लेकिन इससे ही सच्चे सुख और आत्मिक आजादी मिलती है. ये वो अनमोल धरोहर है जिससे निर्भयता और साहस जैसे गुण जन्म लेते हैं. अतः सत्यता को अपनाइए और जीवन संग्राम में विजय का शंखनाद कीजिए. ऐसी हमारी आपके लिए हार्दिक शुभकामनाएं हैं.

0: रेणुधुनी 90.4 एफएम केएलई गणसू पे आप ट्यून है और अभी हम सुनेंगे ऑल इंडिया रेडियो के सहयोग से प्रस्तुत होने वाले न्यूज
1: हुआ करता था। तो ये वो जमाने की बात है जब लोग एक पार्टिकुलर टाइम पे एक प्रोग्राम होता था उसका इंतजार करते थे, ठीक है, और आज भी लोग करते होंगे, मैं इस चीज को नहीं मान, लेकिन आज जो एक्सटेंशन का रूप बदला है कि जैसे अगर एक विशेषज्ञ है वो कुछ बात करना चाहता है, अपनी बातों को दिमाग में रखना चाहता है या कहीं पर वो उपस्थित है और उसको ये लग रहा है कि ये चीज किसी अपने ऑडियंस को दिखाने लायक है जो बहुत ऑथेंटिकेट है, वो अपने माध्यम से दिखा रहा है और लोगों तक पहुंच रहा है।
2: मोदी सरकार के 12 साल पूरे होने और प्रधानमंत्री के सबसे लंबे कार्यकाल की उपलब्धि के उपलक्ष में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए की आज नई दिल्ली में बैठक। केंद्र ने 125,000 करोड़ रुपए की ग्रामीण विकास योजना की घोषणा की। विकसित भारत जी राम जी का नया संस्करण 1 जुलाई से होगा लागू। ओमान तट पर अमरीकी सेना के अपाचे हेलीकॉप्टर को गिराए जाने के जवाब में अमरीका ने ईरान पर जवाबी हमले किए और क्रिकेट में ऋतुराज गायकवाड़ के शतक की बदौलत भारत ने दांबुला में त्रिकोणीय एक दिवसीय श्रृंखला के पहले मैच में श्रीलंका ए को 8 रन से हराया। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज भारत के सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले निर्वाचित प्रधानमंत्री बन गए हैं। श्री मोदी ने 26 मई 2014 को प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी। उन्होंने पंडित जवाहरलाल नेहरू का रिकॉर्ड तोड़ दिया है जिन्होंने पहली बार 13 मई 1952 को निर्वाचित प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली थी और 27 मई 1964 तक पद पर रहे थे। पंडित नेहरू का निर्वाचित प्रधानमंत्री के रूप में कार्यकाल 4,398 दिन का था। 26 मई 2014 से आज 10 जून 2026 तक प्रधानमंत्री मोदी का निरंतर कार्यकाल अब 4,399 दिन का हो गया है। एक रिपोर्ट।
3: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यह उपलब्धि विशेष रूप से उल्लेखनीय है क्योंकि भारत जैसे 140 करोड़ से अधिक आबादी वाले देश का शासन प्रशासन अत्यंत व्यापक और जटिल है। भाषाई, सांस्कृतिक, धार्मिक तथा भौगोलिक विविधताओं से युक्त इस राष्ट्र का सफल नेतृत्व और संचालन अपने आप में एक बड़ी जिम्मेदारी और चुनौती है। ऐसे समय में जब अनेक देशों में राजनीतिक अस्थिरता, सरकारों में बार बार परिवर्तन तथा नीतिगत अनिश्चितता देखने को मिल रही है, भारत में नेतृत्व और शासन में निरंतर रही है। यह विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र में लगातार 3 बार राष्ट्र जनादेशों द्वारा जनता का निरंतर भरोसा दर्शाता है। स्वतंत्र वैश्विक सर्वेक्षणों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लगातार विश्व के सर्वाधिक लोकप्रिय लोकतांत्रिक नेताओं में स्थान दिया गया है। साथ ही उन्हें अब तक 30 से अधिक देशों द्वारा सर्वोच्च नागरिक सम्मानों से भी सम्मानित किया गया है। प्रधानमंत्री

0: वीडियो संदेश में प्रधानमंत्री मोदी को आदर्श नेतृत्व का उदाहरण बताया। त्रिनिदाद और टोबैगो की प्रधानमंत्री कमला प्रसाद बिसेसर ने कहा है कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारत वैश्विक मामलों में प्रखर आवाज के रूप में उभरा है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देश के सबसे लंबे समय तक लगातार निर्वाचित प्रधानमंत्री बने रहने पर बधाई दी है। उपराष्ट्रपति ने कहा है कि यह ऐतिहासिक उपलब्धि केवल कार्यकाल की अवधि नहीं है, बल्कि राष्ट्रीय विकास यात्रा में एक परिवर्तनकारी युग का प्रतीक। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए की बैठक आज नई दिल्ली में होगी। इसमें सरकार के 12 वर्ष पूरे होने और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भारत के सबसे लंबे समय तक लगातार निर्वाचित प्रधानमंत्री रहने का जश्न मनाया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेताओं के साथ साथ एनडीए गठबंधन के सभी घटक दलों के नेताओं की भी बैठक में शामिल होने की उम्मीद है। बैठक में एनडीए के शासन वाले सभी 22 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री और उपमुख्यमंत्री तथा गठबंधन के सभी घटक दलों के नेता भी उपस्थित रहेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गृह नगर गुजरात के वडनगर में आज उनके सफल शासन के 12 वर्षों के उपलक्ष्य में कार्यक्रमों की एक श्रृंखला आयोजित की जाएगी, जिसमें विकसित भारत के दृष्टिकोण को साकार करने के लिए जन भागीदारी पर जोर दिया जाएगा।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गृहनगर वडनगर में उनकी 12 वर्षों के सफल शासन के उपलक्ष्य में आज कई विशेष कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। इस अवसर को यादगार बनाने के लिए जिला प्रशासन द्वारा आज शाम 7 बजे ऐतिहासिक शर्मिष्ठा झील पर एक भव्य महाआरती और 10,000 दीपक जलाने की विशेष व्यवस्था की गई है। इसी के साथ प्रदेश भाजपा द्वारा प्राचीन हाटकेश्वर मंदिर में भी कई कार्यक्रमों का आयोजन किया गया है, जिसकी शुरुआत शाम 4:30 बजे स्वच्छ भारत अभियान और स्वच्छता कर्मियों के सम्मान समारोह के साथ होगी। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष जगदीश विश्वकर्मा आज शाम मंदिर में एक भव्य महाआरती का नेतृत्व करेंगे, जिसमें बड़ी संख्या में नागरिक, पार्टी कार्यकर्ता और श्रद्धालुओं के शामिल होने की उम्मीद है। अपर्णा खुंट, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
0: मोदी सरकार के 12 वर्ष पूरा होने के उपलक्ष्य में चलाए जा रहे राष्ट्रव्यापी अभियान के अंतर्गत भारतीय जनता पार्टी आज उत्तर प्रदेश के सभी 403 विधानसभा क्षेत्रों के मंदिरों में विशेष प्रार्थना सभाओं का आयोजन करेगी। प्रधानमंत्री मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में विशेष कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं।
2: माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक फ्लैगशिप इनिशिएटिव भारत इनोवेट्स 2026, जिसमें हेल्थ केयर और एआई से लेकर एग्रीकल्चर और सेमीकंडक्टर्स तक 13 सेक्टर्स के 120 स्टार्टअप्स 14 से 16 जून तक नीस फ्रांस में अपनी इनोवेशन और एंटरप्रेन्योरियल क्षमताओं का प्रदर्शन करेंगे। भारत इनोवेट्स 2026, भारत में निर्मित, विश्व के लिए तैयार।
0: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। आकाशवाणी समाचार केंद्र सरकार के पिछले 12 वर्षों में विभिन्न प्रमुख क्षेत्रों में किए गए प्रयासों पर एक विशेष श्रृंखला प्रस्तुत कर रहा है। आज हम युवाओं के सशक्तिकरण की दिशा में सरकार के प्रयासों पर चर्चा कर रहे हैं।
3: पिछले 12 वर्षों में सरकार ने देश की युवा शक्ति को सशक्त बनाने पर विशेष ध्यान दिया है। भारत के अगली पीढ़ी के सुधार अब एक तेज गति वाले सुधार अभियान बन चुके हैं, जिसके केंद्र में युवा शक्ति है। विकसित भारत के निर्माण और विभिन्न क्षेत्रों में देश के भविष्य को आकार देने में युवाओं की महत्वपूर्ण भूमिका है। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत 12 करोड़ से अधिक नए उद्यमियों को ऋण प्रदान किया गया है, जिससे युवाओं के सपनों को नई उड़ान मिली है। सरकार युवाओं को रोजगार और आत्मनिर्भरता की दिशा में आगे बढ़ाने के लिए सशक्त बना रही है, जिससे वे नौकरी तलाशने वाले नहीं बल्कि रोजगार देने वाले बन रहे हैं। छत्तीसगढ़ के रायपुर की महिला उद्यमी ईशा पटेल ने बताया कि कैसे उन्होंने घर पर खाना बनाने से शुरुआत करने से लेकर एक सफल कैफे व्यवसाय स्थापित करने तक की यात्रा की।
4: मेन ना यूथ को लगता है कि हमारे पास फंडिंग नहीं है, बट वो गवर्नमेंट स्कीम्स के बारे में अवेयर नहीं।

0: तो मैं अपने साइड से यही उन्हें सजेशन देना चाहूंगी, अब थोड़ा रिसर्च करो। जैसे मुद्रा लोन भी है, वैसे पीएमईजीपी लोन भी है, कई लोन जो आपको विदाउट मॉर्गेज मिल रहे हैं। आपके में पोटेंशियल है तो आप जॉब ड्रॉप करो, क्योंकि स्काई हैज नो लिमिट्स फॉर यू।
1: प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के अंतर्गत 1,60,00,000 से अधिक युवाओं को प्रशिक्षण प्रदान किया गया है। कुशल युवाओं की बढ़ती संख्या मेक इन इंडिया पहल को नई ऊर्जा दे रही है। रोजगार मेलों के माध्यम से 12,00,000 नियुक्ति पत्र वितरित किए जा चुके हैं, जिससे युवाओं के रोजगार के सपने साकार हो रहे हैं। देश में 2,20,000 से अधिक स्टार्टअप्स ने 23,00,000 से ज्यादा रोजगार के अवसर सृजित किए हैं। वहीं छात्रों द्वारा 16,00,000 नवाचार परियोजनाएं विकसित की गई हैं, जिन्होंने स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत आधार प्रदान किया है। प्रधानमंत्री सेतु योजना के तहत 1,000 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों ITI के आधुनिकीकरण के लिए 60,000 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं, जिससे युवाओं को उद्योगों की आवश्यकताओं के अनुरूप कौशल प्रदान किया जा सकेगा। सरकार के सहयोग और देश की युवा शक्ति के प्रयासों से भारत के विकास का एक नया अध्याय लिखा जा रहा है। अनुपम मिश्र के साथ सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
2: माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक फ्लैगशिप इनिशिएटिव भारत इनोवेट्स 2026, जिसमें हेल्थ केयर और AI से लेकर एग्रीकल्चर और सेमीकंडक्टर्स तक 13 सेक्टर्स के 120 स्टार्टअप्स 14 से 16 जून तक नीस फ्रांस में अपनी इनोवेशन और एंटरप्रेन्योरियल क्षमताओं का प्रदर्शन करेंगे। भारत इनोवेट्स 2026, भारत में निर्मित, विश्व के लिए तैयार।
3: केंद्र सरकार ने ग्रामीण विकास के लिए 1,25,00,000 रुपए की योजनाओं की घोषणा की है। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बताया कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम मनरेगा के अंतर्गत पहले ही 30,000 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। यह अधिनियम 1 जुलाई से पूरे देश में लागू हो जाएगा। ओमान तट के पास अमरीकी सेना के अपाचे हेलीकॉप्टर को गिराए जाने के जवाब में अमरीका ने ईरान पर हमले किए हैं। अधिकारियों ने बताया कि हेलीकॉप्टर को एक ईरानी ड्रोन ने गिराया था, हालांकि दोनों पायलटों को बचा लिया गया। उधर ईरान ने भी क्षेत्र में अमरीकी ठिकानों पर मिसाइलें और ड्रोन दागे हैं।
4: ईरान के दक्षिणी तट पर सिरिक, बंदर अब्बास, केशम, जास और कोहे मुबारक समेत कई स्थानों पर विस्फोटों की खबरें मिली हैं। सरकारी मीडिया ने बताया कि सिरिक के बामानी जिले में 2 जल भंडार टैंक क्षतिग्रस्त हो गए, जिससे स्थानीय पेयजल आपूर्ति बाधित हो गई। ईरानी विदेश मंत्री अब्बास अराग्ची ने चेतावनी दी कि तेहरान किसी भी हमले या धमकी का जवाब दिए बिना नहीं रहेगा। और
3: क्रिकेट में इंडिया ए ने कल त्रिकोणीय श्रृंखला के पहले मुकाबले में श्रीलंका ए को 8 रन से हराया। इंडिया ए का अगला मुकाबला कल अफगानिस्तान ए से होगा। फाइनल खेला जाएगा 21 जून को। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं विशाल शर्मा।
5: धन्यवाद मुनीष। देश की राजधानी से प्रकाशित हिंदी समाचार पत्रों ने सरकार की 12 साल की उपलब्धियों और पीओके में बढ़ती पाकिस्तान की बर्बरता की खबरों को सुर्खियों से प्रकाशित किया है। लोक सत्य ने देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की तस्वीर के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चित्र प्रकाशित करते हुए श्री मोदी के सबसे लंबे समय तक प्रधानमंत्री होने के रिकॉर्ड को रेखांकित किया है। पत्र ने उनके ऐतिहासिक 14 फैसलों को भी क्रमवार सूचीबद्ध किया है। अमर उजाला ने पाक अधिकृत कश्मीर के मुजफ्फराबाद की तस्वीर प्रकाशित करते हुए अपनी खबर को शीर्षक दिया है, मानवाधिकार उल्लंघन पर पाकिस्तान को जवाबदेह ठहराए दुनिया। पत्र ने ब्रिटेन के 50 सांसदों के उस पत्र का भी उल्लेख किया है, जिसमें उन्होंने लिखा है कि पाकिस्तानी कब्जे वाले कश्मीर में लोग सेना की बर्बरता से डरे हुए हैं।
3: और अंत में लीजिए सुनिए इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत के सबसे लंबे कार्यकाल वाले निर्वाचित प्रधानमंत्री बने। विश्व के नेताओं ने प्रधानमंत्री मोदी के परिवर्तनकारी शासन और विकासशील देशों की पैरवी के उनके प्रयासों की सराहना की। केंद्र ने 1,25,00,000 रुपए की ग्रामीण विकास योजना की घोषणा की। ओमान तट पर अमरीकी सेना के अपाचे हेलीकॉप्टर को गिराए जाने के जवाब में अमरीका ने ईरान पर हमले किए। और क्रिकेट में ऋतुराज गायकवाड़ के शतक की बदौलत भारत ए ने त्रिकोणीय एक दिवसीय श्रृंखला के पहले मैच में श्रीलंका ए को 8 रन से हरा दिया है। और इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
6: और अब तक हम सुन रहे थे ऑल इंडिया रेडियो के सहयोग से प्रस्तुत होने वाले न्यूज। आप सुनते रहे वेणु धोनी 90.4 FM KLE कनसु।

माँ बनने में हो रही है देर, इंतजार है खुशखबरी का। देयर इज वन नेम यू कैन ट्रस्ट, केली फर्टिलिटी सेंटर विद साइंस, सोल एंड सेंसिटिविटी। जिंदगी को दो नई शुरुआत केली IVF के साथ। आज ही विजिट करें केली फर्टिलिटी सेंटर, OPD नंबर 97, शरावती सेकेंड फ्लोर, केलीज डॉक्टर प्रभाकर कोरे हॉस्पिटल एंड MRC बेगावी। फोन नंबर 08312551530 एंड 247377 एक्सटेंशन 1530।

0: नमस्कार, आप सुन रहे वेणु धोनी 90.4 FM KLE कनसू। आज के इस विशेष प्रोग्राम में मनीषा आपका स्वागत करती है। आज हम एक महत्वपूर्ण टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं, जो है फोन एडिक्शन के बारे में। आज हम जान लेंगे क्या होता है ये और किस तेजी से ये बढ़ रहा है, इसके मानसिक स्वास्थ्य पर क्या परिणाम होता है, इन सभी के बारे में आज के शो में चर्चा होगी। और इसके ऊपर मार्गदर्शन करने के लिए मेरे साथ है डॉक्टर नितिन आनंद, जो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो साइंसेस निमहांस बेंगलुरु में क्लिनिकल साइकोलॉजी के प्रोफेसर है। उसी के साथ निमहांस के सर्विस फॉर हेल्दी यूज ऑफ टेक्नोलॉजी क्लिनिक में विशेष तज्ञ सलाहकार के रूप में कार्यरत है। ये भारत का पहला टेक्नोलॉजी डी एडिक्शन क्लिनिक है, जहाँ इंटरनेट, सोशल मीडिया, गेमिंग और जुआ की लत से जुड़ी समस्याओं के लिए विशेष उपचार और परामर्श दिया जाता है, खासकर किशोरों और युवाओं के लिए। इसके अलावा सर स्पेशलिटी ओबेसिव डिसऑर्डर क्लिनिक में भी मनोवैज्ञानिक मूल्यांकन और उपचार प्रदान करते हैं, जो इस प्रकार का भारत में शुरू किया गया पहला विशेष क्लिनिक है। डॉक्टर आनंद असेसमेंट साइकोलॉजी रिसर्च एंड एप्लीकेशन डिवीजन के फैकल्टी इंचार्ज भी है, जो भारत के लिए स्वदेशी मनोवैज्ञानिक परीक्षणों के विकास और मानकीकरण पर कार्य करता है। सर, वेणुधुनी के स्टूडियो में आपका स्वागत है।
1: थैंक यू वेरी मच।
0: आज हम बहुत ही बर्निंग टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं सर, कि फोन एडिक्शन कैसे होता है। उसके बारे में सबसे पहले मैं यही जानना चाहूंगी कि ये फोन या फिर मोबाइल एडिक्शन होता क्या है।
1: तो मैम, मोबाइल फोन एडिक्शन ये ऐसी एक बिहेवियर एडिक्शन है जिसके लिए सभी लोग रिस्क पे हैं। अगर इसमें पूछा जाए कि कौन रिस्क पे है, तो जो जो मोबाइल फोन यूज कर रहे हैं वो सभी रिस्क पे हैं। और रिस्क पे क्यों हैं? क्योंकि जो टेक्नोलॉजीज बनाई गई हैं, जैसे मोबाइल फोन है, मोबाइल फोन के अंदर बहुत सारी टेक्नोलॉजीज हैं, बहुत सारे एप्लीकेशन हैं, जैसे सोशल मीडिया एप्लीकेशन है, जैसे कि उसमें गेमिंग एप्लीकेशन है, उसमें एंटरटेनमेंट के लिए बहुत सारे स्ट्रीमिंग एप्लीकेशन हैं, वेब सीरीज एप्लीकेशन हैं। तो जो एप्लीकेशन बनाए जाते हैं, ये बनाए इसलिए जाते हैं कि ये हमको, हम इनको बार बार यूज करें। वो बना ही इसी तरीके से जाता है कि उसमें हमें बहुत रीइन्फोर्समेंट मिलता है, बहुत रिवॉर्ड मिलता है, खुशी मिलती है, एक्साइटमेंट मिलती है, सरप्राइज मिलता है, हमारा जो मूड है वो एकदम तुरंत ही बदल जाता है उसे देखने से। उसे हमें एकदम आनंद मिलता है, जो कि बाकी चीज़ों में हमें उतनी जल्दी आनंद नहीं मिलता। अगर हम कोई और कार्य करेंगे, घर पे कोई और कार्य कर रहे हैं, अगर कोई एडोलेसेंट हैं, कोई नवयुवक हैं, अगर वो पढ़ाई कर रहे हैं या कोई गेम्स खेल रहे हैं या अपने किसी सहपाठी के साथ या अपने किसी फ्रेंड के साथ में बात कर रहे हैं, तो उनको तुरंत इतना खुशी का आभास नहीं होगा। लेकिन जब भी वो कोई मोबाइल फोन यूज़ करते हैं या उसे कोई एप्लीकेशन यूज़ करते हैं, तो तुरंत ही हर आधे मिनट में उनको एक आनंद की अनुभूति होती है, क्योंकि वो डिजाइन ही इसी तरह के किए गए हैं कि उनको एकदम खुशी तुरंत ही मिल जाए। और जितनी बार उनको खुशी मिलती है, उतनी बार ये उनका दृढ़ संकल्प हो जाता है धीरे धीरे उनके मस्तिष्क में कि इसको यूज करने से हमें बहुत खुशी मिलती है, इसे हमें यूज करने से आनंद मिलता है।
0: अच्छा।
1: तो एक हो गया कि जो मोबाइल फोन है, जो एप्लीकेशन बनाए गए हैं, वो अडिक्ट होने के लिए ही बनाए गए हैं कंपनीज द्वारा।
0: बाप रे।
1: क्योंकि अगर वो एप्लीकेशन तभी सक्सेसफुल होंगे जब आप उस पर ज्यादा से ज्यादा समय बिताएं।
0: करेक्ट।
1: और उसमें कई दूसरे तरह से जो हमारे अंदर खुद के अंदर कई सारे वल्नरेबिलिटी रहती है, और इसको हमें तब पता लगता है जब हम देखते हैं कि हम उसके कुछ ऐसे लक्षण होते हैं, जैसे कि एक बोलते हैं प्री ऑक्यूपेशन होना। प्री ऑक्यूपेशन का मतलब होता है एक ही मोबाइल फोन एप्लीकेशन को या स्मार्टफोन को आप काफी देर तक यूज करते हैं और आपका, आपको अपने समय कितना बीत चुका है उसका अंदाजा चला जाता है।
0: एग्जैक्टली।
1: उसको बोलते हैं प्री ऑक्यूपेशन। कोई भी और काम कर रहे हैं, लेकिन सबसे जैसे एकदम तुरंत फ्री होते हैं तो फिर आपका हाथ वही मोबाइल फोन में जाएगा, उसे आप ओपन करेंगे। तो ये एक पहला लक्षण होता है प्री ऑक्यूपेशन। दूसरा लक्षण होता है, इसे बोलते हैं विड्रॉल।
0: अच्छा।
1: विड्रॉल ऐसा होता है कि जब भी आप अपने स्मार्टफोन से दूर हैं तब आपको चिड़चिड़ापन लगता है।
0: हाँ।
1: तब आपको थोड़ी बेचैनी लगती है, तब आपको थोड़ी घबराहट होती है, या तब आपको गुस्सा आ जाता है। चाहे तो आप ये फोन आपके पास ना हो, हो सकता है फोन की बैटरी खत्म हो गई हो, फोन का इंटरनेट का कनेक्शन खत्म हो गया हो, या किसी ने फोन आपसे घर में ले लिया हो। तो अगर ये हो रहा है तो इसका दूसरा लक्षण है, इसे बोलते हैं विड्रॉल सिम्टम।
0: अच्छा।
1: और आपने देखा होगा कि बहुत सारी खबरें ऐसी आती हैं जिसमें कि बच्चों से जब माँ बाप ने मोबाइल ले लिया, बच्चों में तुरंत एक तीव्रता से एक गुस्सा, बेचैनी आ गई, जिससे कि माँ बच्चों और पेरेंट्स के बीच में, माँ बाप के बीच में लड़ाई हुई, जिसकी वजह से बहुत सारे ऐसी रिपोर्ट्स भी आई हैं जिसमें कि देखा गया है कि बच्चों ने कुछ ऐसे एक्शन ले लिए जो कि बहुत घातक रहे हैं उनके लिए, उन्होंने कुछ फिजिकल वायलेंस कर दिया गया है। तो ये होता है विड्रॉल। तीसरा होता है टॉलरेंस, ये तीसरा लक्षण टॉलरेंस का मतलब होता है, पहले ही सिर्फ 5 मिनट यूज करने में 10 मिनट यूज करने में ही आनंद मिल जाया करता था, लेकिन धीरे धीरे उसका समय जो है बढ़ता जा रहा है। पहले वो जो चीज 10 मिनट में खुशी देती थी वो 20 मिनट हुआ, आधा घंटा हुआ, वो 1 घंटा हुआ, क्योंकि धीरे धीरे पहले खुशी का आभास आपको थोड़ी देर यूज करने में मिल जाया करता था, लेकिन अब उसको ज्यादा देर तक यूज करना पड़ता है तब आपको संतुष्टि मिलती है। और धीरे धीरे इसी तरह टाइम जो होता है पहले आधे घंटा भी नहीं 10-15 मिनट से शुरू होता है, धीरे धीरे कोई भी एप्लीकेशन वो धीरे धीरे अब 1-2 घंटा 3 घंटा तक जा रहा है। Correct. एक बार जब स्टार्ट करते हैं तो रुक नहीं पाते हैं। तो तीसरा लक्षण इसको बोलते हैं टॉलरेंस। चौथा लक्षण होता है कंट्रोल करने की डिफिकल्टी। एक बार जब स्टार्ट कर दिया तो सब बोलते हैं बस 1 मिनट एक मिनट के बाद, बस अभी ये काम 1 मिनट के बाद करता हूं मैं। तो एक बार जब स्टार्ट किया उसके बाद कंट्रोल नहीं कर पाना उसे, उसको बोलते हैं डिफिकल्टी टू कंट्रोल, मतलब कंट्रोल करने की डिफिकल्टी। तो ये चौथा लक्षण है। पांचवा लक्षण होता है कि इसकी वजह से बहुत सारी चीजों में आप जो है आपकी इम्पैक्ट हो पा रहा है, मतलब उन पे असर पड़ रहा है, जैसे कि आप अपना जो स्कूल का काम है वो टाइम पे नहीं खत्म कर पा रहे हैं, ऑफिस का काम टाइम पे खत्म नहीं हो पा रहा है, परफॉर्मेंस कम होती जा रही है, इसकी वजह से आपके घर में आपके पेरेंट्स और बच्चों के बीच में रिश्ते खराब हो रहे हैं, दोनों जो घर में जो भाई बहन है और जो अलग और फैमिली मेम्बर्स हैं उनके साथ रिश्ते खराब हो रहे हैं इसकी वजह से। आप इसकी वजह से कई बार पैसे भी चुरा लेते हैं इसकी वजह से, कि उसमें से कुछ देखा आपने वो चीज़ पसंद आ गई अब उसे खरीदना है, तो उसमें तो ये बहुत सारे हार्मफुल कॉन्सिक्वेंसेज हो रहे हैं। ये होने के बावजूद भी फिर भी आप उसको यूज़ कर रहे हैं, और कई बार अगर आप रात को खाने के बाद इसे यूज़ करते हैं तो 3-4 घंटे रात को हो जाता है, 1 बज गया तब सो रहे हैं, तो स्लीप भी इससे डिले हो जाती है। तो ये पाँचवा। छठा होता है कि आपके जो सोशल रिलेशनशिप हैं उसमें आपकी रुचि जो है कम हो जाती है, अब आपका मन नहीं करता लोगों से बातचीत करें, क्योंकि जैसे मैंने पहला बताया लोगों से बातचीत करें, क्या कोई फंक्शन है घर में वह जाएं, या किसी ने आपको कम्युनिटी में फंक्शन में बुलाया हुआ है अपने कॉलोनी में, वहां जाने का मन नहीं करता, क्योंकि वो अब रुचि लायक नहीं रहा, क्योंकि सबसे ज़्यादा रुचि, क्योंकि इतना ज़्यादा आनंद वो तो देंगे नहीं जैसे मैंने शुरू में बताया, वो एप्लीकेशन जो हैं वो ज़्यादा खुशी देते हैं आपको, तो उसमें टाइम बिताना। सातवां होता है कि जब भी आपका मूड जो है जब ख़राब हो जाए, जब चिड़चिड़ापन हो, घबराहट हो, बेचैनी हो, या किसी से कुछ मनमुटाव हो जाए, तो उसी टाइम तुरंत आप मोबाइल फ़ोन का एक्सेस करते हैं, और उस टाइम पे फिर उसको देखने के बाद आपका मूड ठीक हो जाता है। उसको बोलते हैं कि मूड मॉडिफिकेशन, आपका मूड जो है में परिवर्तन आ गया।
0: अच्छा।
1: और अपने आप मोबाइल फ़ोन को अपना मूड ठीक करने के लिए भी इस्तेमाल करने लगे हैं। और आखिरी है जो आठवां लक्षण है कि जब आप कितना, अगर कोई पूछे आप कितना टाइम बिताते हैं तो मोबाइल फ़ोन पे, तो आप हमेशा कम ही बताते हैं, क्योंकि आपको पता ही कितना टाइम बिता रहे हैं आप। तो ये 8 लक्षण हैं, इन 8 लक्षण में से अगर कोई भी 5 लक्षण अगर आपको, आपके घर वालों को, आपके दोस्तों को, और किसी को भी जिनको आप जानते हैं अगर हैं, तो उनको डिजिटल एडिक्शन लगभग तय है।
0: अच्छा, मुझे लगता है जो भी ये प्रोग्राम सुन रहे हैं अभी उनमें से कुछ गिने चुने लोग होंगे जो भी एज लिमिट की वजह से शायद होंगे, मतलब एज फैक्टर की वजह से जिनको ये लत नहीं है, या फिर जो ज़्यादा समय अपना मोबाइल पे नहीं बिताते हैं। नहीं तो 90% लोग अभी मोबाइल से अडिक्ट हो चुके हैं और वो बहुत बड़ी लत लग चुकी है अभी लोगों को। तो मेरे ख्याल से सर अभी ये जो सभी आपने लक्षण बताए, या फिर जो एप्लीकेशंस है जो इतने अच्छी तरह से डिज़ाइन किए हैं कि लोगों को उस आदत लगे, उसकी वजह से ही ये जो लत है वो तेज़ी से बढ़ रही है। तो सर क्या मोबाइल एडिक्शन को एक मानसिक स्वास्थ्य समस्या भी माना जा सकता है?
1: हाँ, मोबाइल फ़ोन एडिक्शन को मानसिक स्वास्थ्य समस्या बिल्कुल माना जा सकता है, क्योंकि इसमें निमहैंस ने, सर्विस फॉर हेल्दी यूज़र टेक्नोलॉजी क्लिनिक निमहैंस जहाँ पे मैं काम करता हूँ, वहाँ पे हमने काफ़ी रिसर्च करी है इसके बारे में, और इसमें पाया गया है कि ये बहुत सारे युवकों में, एडोलेसेंट्स में और जो यंग अडल्ट हैं उनमें ये पाया जा रहा है, और हमने यहाँ पे भी और बाकी जितनी भी दुनिया में रिसर्च की जा रही है उसमें पाया गया है कि ये एक मानसिक समस्या बन गई है। अगर मैं कुछ आंकड़े आपको उसको बताऊं, तो हमने कुछ रिसर्च करी जिसमें कि कर्नाटका

0: जो कि हॉस्टल्स में रहते हैं, रेंटेड अकोमोडेशन में रहते हैं, और जो कि लगभग 3 से ज़्यादा घंटे इंटरनेट का यूज़ या स्मार्टफोन का यूज़ करते हैं अपने आनंद लेने के लिए या अपने आप को रिलैक्स करने के लिए या कोई और एक्टिविटीज़ के लिए, वो ज़्यादा रिस्क में हैं।
1: अच्छा।
0: और एक साइकोलॉजिकल समस्या और जो आगे उभर के आ रही है वो है डिप्रेशन। वो ये भी देखा गया है कि स्टडी में जिन लोगों को डिप्रेशन था उन लोगों का ज़्यादा रिस्क बन जाता है स्मार्टफोन को जरूरत से ज़्यादा यूज़ करने का, जैसे बोलते हैं स्मार्टफोन एडिक्शन होने की उनको ज़्यादा रिस्क है। तो ये कुछ आंकड़े हमारे पास हैं। और एक हमने शट क्लिनिक निमहन से 2015 में एक सर्वे हमने बैंगलोर और आसपास के जो सब अर्बन एरिया थे, रूरल एरियाज में, वहाँ किया था। और ये सर्वे 2,755 लोगों पे किया गया था, एज ग्रुप था 18 से 30 साल। और इसमें हमने क्या पाया गया कि इसमें 1.3% लोगों को इंटरनेट एडिक्शन पाया गया, 4.1% लोगों को स्मार्टफोन एडिक्शन पाया गया, 3.5% लोगों को सोशल नेटवर्किंग साइट्स एडिक्शन पाया गया, 4% लोगों को शॉपिंग एडिक्शन पाया गया, गैम्बलिंग एडिक्शन जिसे बोलते हैं 1.2% पाया गया, और वीडियो गेम एडिक्शन 7%।
1: अच्छा, तो क्या कहती है आपकी स्टडी की ये जो आंकड़े अभी आपने बताए, तो कौन से स्टेज पे है हम अभी?
0: ये आप मान सकते हैं कि एक कम्युनिटी में तीनों तरह के सिवियरिटी पाई जा रही है, माइल्ड भी है, मॉडरेट भी है और सिवियर भी है।
1: अच्छा।
0: तो जो माइल्ड हैं वो सबसे ज़्यादा हैं, लगभग 27 से 29% लोग माइल्ड इंटरनेट एडिक्शन है जो भी असेसमेंट जो रिसर्च की गई है इंडिया में, और लगभग 16% लोग हैं जो कि मॉडरेट हैं। तो अगर देखा जाए तो सब ज़्यादातर भी माइल्ड टू मॉडरेट की कैटेगरी में है। और इस चीज़ को अगर अभी हमने ध्यान नहीं दिया गया, विशेषज्ञों ने नहीं ध्यान दिया, और बाकी जो भी इसमें स्टेक होल्डर्स हैं जैसे कि स्कूल में टीचर्स, घर पे पेरेंट्स और बाकी हॉस्पिटल्स में मनोवैज्ञानिक, इन सभी को इस समस्या से मिलकर जूझना पड़ेगा। इससे हमें जूझने की तैयारी करनी पड़ेगी, क्योंकि सारे लोग क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट के पास नहीं आ पाते हैं, जिनको कि मॉडरेट या सीवियर नहीं है वो यहाँ नहीं आएंगे, हॉस्पिटल नहीं जाएंगे हेल्प लेने के लिए। लेकिन जो माइल्ड हैं वो हो सकता है कि हमारे पास ना भी पहुँचे, वो एक्सेस होगा, वो स्कूल में है, वो कॉलेजेस में है और वो घर पे हैं। लेकिन अगर वो ज्यादा यूज करेंगे इसको तो जो माइल्ड है वो धीरे धीरे मॉडरेट बनेंगे और जो मॉडरेट हैं वो धीरे धीरे सिवियर की तरफ जा सकते हैं।
1: करेक्ट, वो शिफ्ट होने के लिए ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो सर अभी इतना सब कुछ आपने बताया, तो इसका मतलब ज्यादा इस्तेमाल करने से शारीरिक और मानसिक रूप पे क्या असर पड़ता है?
0: तो इसमें हमने ये पाया गया कि इसमें बहुत सारी तकलीफें आपको हो जाती हैं, जैसे कि कुछ तरह के फिनोमिना मैं आपको बताऊंगा। एक बोलते हैं इसे, कहते हैं कि शारीरिक समस्याओं से, इससे कि आपकी गर्दन में, शोल्डर्स में और पीछे जो स्पाइन है आपकी, जो रीढ़ की हड्डी है, इसमें पेन होना, इन्फ्लेशन होना।
1: अच्छा।
0: हो जाता है, इसे बोलते हैं टेक्स्ट नेक सिंड्रोम। जब आप सीधे खड़े रहते हैं और आपका अगर सर बिल्कुल टिल्ट नहीं हुआ है, 0 डिग्री पे रहता है, तो लगभग आपका जो मस्तिष्क है वो 4 से 5.5 किलो का उसका वजन होता है। ठीक है, जैसी जैसी ये आपका शरीर का जो मस्तिष्क का जो आपका जो गर्दन का टिल्ट है अगर वो 15 डिग्री होता है, तो आपका लगभग जो जो आपकी जो पुल है धरती की तरफ, ग्रेविटेशनल पुल, वो 12 kg का हो जाता है। और धीरे धीरे जैसे ये 30 डिग्री का टिल्ट होगा, ये 18 केजी का हो जाएगा, पुल करेगा, इतना ग्रेविटेशनल पुल होता है। जब 45 डिग्री पे टिल्ट रहेगा आपका नेक, तो ये 22 किलो का ग्रेविटेशनल पुल करता है। और जब ये पूरा 60 डिग्री पे, जैसे कि पूरा अपने बिल्कुल ही इमर्स हो जाते हैं अपने गेमिंग एक्टिविटी में, सोशल मीडिया में या कोई वेब सीरीज वॉचिंग में, तो जब ये 60 डिग्री टिल्ट होता है तो लगभग ये 27 केजी का ग्रेविटेशनल पुल होता है। और अगर ये एक्सटेंडेड पीरियड, मतलब अगर ये लंबे समय तक 2 घंटा 3 घंटा भी इस सिचुएशन में रहें और रोज लगभग, तो ये आपको कुछ समय बाद आपकी नेक मसल्स, शोल्डर मसल्स लूज होने लग जाती हैं।
1: अच्छा।
0: और इसकी वजह से आपको पेन और ये नेक में स्पैज़म रहता है। तो ये है टेक्स्ट नेक सिंड्रोम। कुछ लोगों को जो जरूर से ज़्यादा गेमिंग करते हैं उनके हाथ में कार्पल टनल सिंड्रोम, जो जैसे कि जैसे पहले बोलते थे कि जो ज़्यादा टाइप करते हैं उनको होता है, अब जो ज़्यादा गेमिंग करते हैं वो अपनी इंडेक्स फिंगर, थंब और जो सेकंड फिंगर है इसका ही इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं, तो उनके यहाँ पर रिस्ट में पेन स्टार्ट हो जाती है। कई लोगों को ड्राई आइस की शिकायत होती है क्योंकि उनकी आइस ड्राई हो जाती हैं, बिकॉज जो गेमिंग है और सोशल मीडिया है ये आपकी जो नॉर्मल ब्लिंकिंग होती है आई मूवमेंट, ये उसको रिस्ट्रिक्ट कर देती है। आपका एक मिनट में लगभग 20 से 30 बार ये आइस ब्लिंक होती हैं, लेकिन जब आप गेम्स खेलते हैं, स्पेशली जब सोशल मीडिया पर रहते हैं, जब रील्स देखते हैं आप एक के बाद एक, तो ये आइस बंद होने का जो नॉर्मल फंक्शन है वो नहीं होता।
1: करेक्ट।
0: तो जब वो नहीं होता है तो आपकी आइस ड्राई होने लग जाती हैं और वो वाटरी आइस बन जाती हैं। तो ये कुछ

0: फिज़िकल तकलीफ़ें जो हो जाती हैं, कुछ मानसिक इनसे फिनोमिनाज भी निकल के आते हैं, जैसे कि उसे बोलते हैं नोमोफोबिया। नोमोफोबिया मतलब नो मोबाइल फोबिया। वो तब होता है जब आप अपने एक ऐसा डर, जैसे कि जब भी आप अपने मोबाइल फ़ोन से कुछ समय दूर रहें तो आप में बेचैनी, चिड़चिड़ापन, गुस्सा लग जाता है। तो रिसर्च ने पाया गया है कि ज़्यादातर ये सभी लोगों में पाया जाता है, और हमें सोचना है कि रिसर्चर्स ने ही बताया कि ज़्यादातर 72% प्रतिशत लोग जो हैं वो 5 फीट से ज़्यादा अपने मोबाइल फ़ोन से दूर नहीं रह पाते हैं। तो ये इसे बोलते हैं नो मोबाइल फोबिया। ये किसी की वजह से भी हो सकता है, और कुछ इसमें इंडिया में पब्लिश्ड आंकड़े भी हैं, यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स के आंकड़े देखा जाए तो माइल्ड नोमोफोबिया 41% लोगों में पाया गया, मॉडरेट 42% में, और सिवियर पाया गया 15.2% लोगों में, यंग यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स में 18 to 24 ईयर्स के बीच में।
1: अच्छा।
0: तो इसे बोलते हैं नो मोबाइल फोबिया। और एक फिनोमिना होता है उसे बोलते हैं फोमो, आपको पता होगा, फेयर ऑफ मिसिंग आउट, मतलब आपको लगता है कि जो आपके फ्रेंड्स हैं या और जो कम्युनिटी है उनकी लाइफ में ऐसा कुछ इंटरेस्टिंग हो रहा है जो कि आपकी लाइफ में नहीं हो रहा है, और अगर आप उससे नहीं जुड़ पाएंगे तो आपसे वो बहुत ही जो फिनोमिना है, जो इवेंट है, वो मिस हो जाएगा, और आप जो है उस ग्रुप से लगभग बाहर हो जाएंगे, आपका ग्रुप से वो जो है टच चला जाएगा। इसे बोलते हैं फियर ऑफ मिसिंग आउट। ये एक मानसिक फिनोमिना है और इसकी वजह से आप ज़्यादा से ज़्यादा इसको यूज़ करते हैं। इसके चलते ही लगभग 56% जो इंटरनेट यूज़र्स हैं वो लगभग 5 घंटे से ज़्यादा अपने मोबाइल फ़ोन से दूर नहीं रह पाते हैं मैक्सिमम। लेकिन ये थोड़ा सा पुराना डेटा है मैं जो आपको बता रहा हूँ, अगर अभी दोबारा रिसर्च की जाए तो ये समय जो है मुश्किल से 2 घंटे भी नहीं रह पाएगा।
1: बिल्कुल।
0: आखिरी बार हम खुद ही सभी श्रोता सोच सकते हैं, आखिरी बार आप जब आप नहीं सो रहे हो तब आप ऐसा कोई टाइम बताइए जब 2 घंटे आप मोबाइल फोन से दूर रहे हो जगते हुए समय।
1: करेक्ट ना।
0: तो ये है नेक्स्ट फिनोमिना, इसे बोलते हैं फैंटम वाइब्रेशन सिंड्रोम। फैंटम वाइब्रेशन सिंड्रोम ऐसा फिनोमिना होता है जब आपको लगता है कि आपका फोन बज रहा है या फिर आपका फोन वाइब्रेट कर रहा है आपकी बॉडी के अगेंस्ट, लेकिन जब आप चेक करते हैं तो ना तो फोन आ रहा होता है, ना तो बज रहा होता है वो, और ना ही वो वाइब्रेट कर रहा होता है। तो इसको बुलाता है फैंटम वाइब्रेशन सिंड्रोम। तो ये हफ्ते में एक आध बार अगर हो जाए तो ठीक है, ये नॉर्मल माना जाता है मनोवैज्ञानिक भाषा में, लेकिन अगर ये 2 या 3 बार हो जाए हफ्ते में, अगर आपको लगे कि ऐसा हो रहा है, तो इसका मतलब इनडायरेक्ट एक लक्षण है, ये फिनोमिना है, एक साइकोलॉजिकल फिनोमिना है कि आपको, जो हमने शुरू में 8 चीजें बात करी थी वो क्राइटेरिया, आपको ये एडिक्शन हो सकता है। एक और एक फिनोमिना इसे बोलते हैं फबिंग, हिंदी में इसका मैं ट्रांसलेशन नहीं कर रहा हूँ, फबिंग इसे बोलते हैं कि जब आप किसी से दूसरे से, कोई आपसे बात करना चाह रहा हो, जब आप किसी दूसरे से बात करना चाह रहे हो तो वो जो है व्यक्ति वो अपने मोबाइल फ़ोन में लगा हुआ है, वो कह रहा है कि मुझसे बात करो मैं सुन रहा हूँ, वो अपना मोबाइल फ़ोन भी देख रहा है और आपसे बात भी कर रहा है। तो इसे लगता है कि बहुत ही नॉर्मल सी एक्टिविटी है, कोई इसमें हार्म नहीं हो रहा है, लेकिन अगर ये सिलसिला चलता रहे तो इससे 4 फंडामेंटल नीड्स, जिसे बोलते हैं मनोवैज्ञानिक भाषा में बोलते हैं साइकोलॉजिकल नीड्स जो हैं, वो इन पे इम्पैक्ट पड़ता है, जैसे कि आपकी सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस उस रिश्ते में, आपकी सेल्फ कॉन्फिडेंस, और कुछ अमाउंट ऑफ कंट्रोल कम्युनिकेशन में, क्योंकि जो आप बात करना चाह रहे हैं, अगर आप बात करना चाह रहे हैं तो जो आपको सेटिस्फेक्शन मिलता है वो कम मिलता है उस रिलेशनशिप में, और धीरे धीरे अगर ये चलता रहे तो ये आपका जो रिश्ता होता है ये इमोशनली लेस सेटिस्फाइंग बन जाता है, और धीरे धीरे फिर वो रिश्ते में जो है डिप्रेसिव सिम्टम्स स्टार्ट होने लगते हैं।
1: अच्छा।
0: तो इसको बोलते हैं फबिंग। ये सारे फिनोमिनाज जो हैं, ये मानसिक फिनोमिनाज जो हैं, ये धीरे धीरे मोबाइल फोन एडिक्शन के साथ में धीरे धीरे आने लग जाते हैं। तो इसको, इन सब फिजिकल प्रॉब्लम्स और ये मानसिक जो फिनोमिनाज हैं, इनको अगर हम नज़र में रखें तो ये वाकई में इन सब चीज़ों का इम्पैक्ट होता है और इसे एक मानसिक रोग माना जा सकता है।
1: बिल्कुल, बहुत अच्छी तरह से समझा है सर आपने, पर हम अपने बच्चों को ये लत लगी है या नहीं वो कैसे पता कर सकते हैं?
0: हाँ, तो यही जैसे मैंने बताया था कि पहला क्राइटेरिया है कि प्री ऑक्यूपेशन, वो सभी काम कर रहे हैं लेकिन उनका मन है कि जैसे ही उनको टाइम मिले एकदम तुरंत ही वो मोबाइल फोन पे वापस आके बैठ जाएं। सारे प्री ऑक्यूपेशन का मतलब होता है कि दिमाग के पीछे यही लगा हुआ है कि जैसे ही ये काम खत्म होगा सीधा मोबाइल फोन के ऊपर हाथ जाएगा, सीधा मोबाइल फोन में सोशल मीडिया खोलेंगे या कुछ व्हाट्सएप खोलेंगे या इंस्टाग्राम रील खोलेंगे या यूट्यूब रील खोलेंगे, तुरंत उनका वहाँ मन लगता है, उनका मन कोई और चीज करने का कर ही नहीं रहा है। हो सकता है वो तुरंत उठ के बाहर जाके खेलने जा सकते थे, तुरंत कुछ उठ के किचन से कुछ रखा हुआ आ गया है, अच्छी चीज कुछ मिठाई रखी है वो खा सकते थे, हो सकता है कुछ और शैतानी कर सकते थे, लेकिन वो कुछ नहीं करते हैं, वो कहाँ मिलेंगे, वो मोबाइल फोन के ऊपर मिलेंगे, तो उसे बोलते हैं प्री ऑक्यूपेशन। तो ये क्राइटेरिया। दूसरा है, पहले वो सिर्फ आधे घंटा 15 मिनट में उसको मोबाइल फोन को छोड़ देते थे, अब वो उस चीज को छोड़ ही नहीं पा रहे हैं जब तक कि उनसे ये उनके हाथ से लिया ना जाए उनके, तो इसे बोलते हैं टॉलरेंस, जैसे मैंने बताया। तीसरा इनका सिम्टम है कि अब जो है उनको, अगर आप उनसे ले लेते हैं फोन तो उनका मूड जो है खराब हो जाता है, बेचैनी हो जाती है, इरिटेशन हो जाता है उनको, और फिर वो उसको ठीक नहीं कर पाते हैं बिना मोबाइल फोन के। चौथी चीज है कि ये भी देखा गया है कि उनको जब भी वो आपके साथ पेरेंट्स के साथ कुछ मतभेद हो जाए, अनबन हो जाए, या घर में कोई और बात हो जाए और वो थोड़ा डिसअपॉइंटेड है, तो वो अपना मूड सही करने के लिए बोलते हैं कि मुझे थोड़ी देर फोन दो, मुझे थोड़ी देर फोन देखना है। जब माँ पूछते हैं क्यों देखना है, तो कहते हैं नहीं मुझे फोन दे दो, मैं फोन देखने के बाद मेरा मूड ठीक हो जाता है। तो वो उसको इस्तेमाल कर रहे हैं। चौथी चीज है कि जब उनसे ये, और जब भी देखा जाए कि अगर उनसे बोला जाए कि अभी आधा घंटा हो गया है, अब इसे बंद करके आ जाओ, तो उनसे खुद से कंट्रोल नहीं हो रहा है, डिफिकल्टी इन कंट्रोलिंग, खुद से कंट्रोल नहीं किया जाता, खुद से बंद नहीं किया जाता, स्टार्ट कर देते हैं लेकिन बंद नहीं हो पा रहा, तो डिफिकल्टी टू कंट्रोल। तो ये सब अगर लक्षण उनमें अगर आपको दिख रहे हैं, और दूसरा कि उनको अब मन नहीं करता है बाहर जाके अपने दोस्तों के साथ खेलने का, उनको मन नहीं करता अब दूसरों से बात करने का, उनको मन नहीं करता कोई और घर में काम करने का, हाथ बटाने का, उनको लगता है वो टाइम जो मुझे मिला है फ्री, वो सारा टाइम मैं इसमें समर्पित कर दूं।
1: बिल्कुल।
0: तो ये अगर उनको लक्षण अगर आपको दिख रहे हैं, इनमें से अगर 8 लक्षण बताए थे, इनमें से अगर 5 भी हैं, तो ये आप मतलब समझ सकते हैं कि वो एक रिस्क पे हैं, तो उनको सहायता की जरूरत है।
1: अच्छा, तो सर इस पे अभी कंट्रोल कैसे पाए हम?
0: ओके, तो इन पे कंट्रोल के लिए हम बोलते हैं डिजिटल हेल्दी यूज ऑफ टेक्नोलॉजी स्किल्स। मतलब हमें टेक्नोलॉजी का एक्सेस तो है, लेकिन हमें उसे किस तरीके से इस्तेमाल करना है उसका हमें ज्ञान नहीं है, क्योंकि टेक्नोलॉजी आपके पास एक्सेस तो आ गया है, लेकिन उसको यूज़ कैसे करें उसका एक्सेस नहीं है। तो इसको हम बोलते हैं डिजिटल हेल्दी यूज ऑफ टेक्नोलॉजी स्किल्स। तो इसमें हम युवकों को और जो एडोलेसेंट्स हैं इस उम्र में, उनको हम कुछ स्किल्स सिखाते हैं। जैसे कि एक होता है स्किल जिसमें बोलते हैं फोन बास्केट स्किल।
1: अच्छा।
0: उसमें जब ये फैमिली मेम्बर्स को भी बताना पड़ता है, ज़रूरी है कि सभी जो फैमिली हैं इंक्लूडिंग युवक जो हैं उसमें, वो शाम को हमें एक टाइम डिसाइड करना है, हो सकता है 7 बजे या हो सकता है 8 बजे या कुछ एक समय लगभग, उस टाइम पे सारे जो अपने फ़ोन हैं, मोबाइल फ़ोन है, लैपटॉप है, आईपैड है या और भी कोई टेक्नोलॉजिकल डिवाइस है, उसको उस टोकरी के अंदर डाल देना। उसके बाद उसको वहां से निकालना नहीं है अगले दिन सुबह तक।
1: अच्छा।
0: अगर बीच में फोन बजेगा तो उठा सकते हैं, लेकिन जो मैसेज आया व्हाट्सएप पे मैसेज आया, कोई इंस्टाग्राम पे फीड आई, फेसबुक पे फीड आई, स्नैपचैट से कुछ नोटिफिकेशंस आ रहे हैं, वो कुछ नहीं चेक होगा। अब जो टाइम बचा है, चाहे वो 8 बजे हो चाहे 7 बजे से रात को 10-11 बजे तक, वो सारा आपने ऑफलाइन एक्टिविटीज में बिताना है।
1: अच्छा।
0: तो ये इसे बोलते हैं फोन बास्केट स्किल। सेकंड होता है कि अपने सेम शाम के समय या पूरे दिन आपको कोशिश करनी कि अपने जो नोटिफिकेशंस हैं उसको साइलेंट मोड में डाल देना है। तीसरा है, इसे बोलते हैं स्टैगर्ड रिस्पांस। मतलब हमें हमेशा अवेलेबल नहीं रहना है इन अपने स्मार्टफोन पे रिस्पॉन्ड करने के लिए। कोशिश करें कि 3 घंटे में एक बार अगर फोन देखें। ये काफी मुश्किल और इम्पॉसिबल लगता है, लेकिन नहीं तो फिर ये प्रीऑक्यूपेशन बढ़ेगा।
1: अच्छा।
0: तो कोशिश करें कि 3 घंटे में एक बार अगर अपना देख सकें मोबाइल फोन, अगर और अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे, सोशल मीडिया कम्युनिकेशन का है उसमें लिखना पड़ेगा आपको, अपना व्हाट्सएप स्टेटस चेंज करना पड़ेगा। मतलब उसमें लिखना पड़ेगा कि मैं जो है अपना मोबाइल फोन मैसेजेस के लिए इस समय देखूंगा। 3 घंटे अगर ज्यादा लगता है 2 घंटे, तो अगर किसी को उससे ज्यादा तुरंत रिस्पॉन्स चाहिए तो है, तो अगर बहुत ज्यादा तुरंत चाहिए तो उसमें लिखना पड़ेगा कि अगर तुरंत रिस्पॉन्स चाहिए तो कृपया कॉल करें, जिससे कि आप फ्री हो जाएं। नहीं तो हमेशा आप एक उसी को रिस्पॉन्ड कर रहे हैं थ्रू आउट द डे, पूरा दिन आप उसी को रिस्पॉन्ड करते रहते हैं। चौथा है कि जब भी आप दूसरों से बात करें तो मोबाइल फोन को सीधा पॉकेट में डाल के बात करें, हाथ में रख के बात नहीं करें। इससे आपके जो रिश्ते हैं वो लेस सेटिस्फाइंग बनते जा रहे हैं, और इनसे जो है आपके जो रिश्तों से जो आपको पहले खुशी मिला करती थी वो अब धीरे धीरे कम होती जा रही है, और आपको ये लगने लगा है सबको जो भी इस्तेमाल करते हैं फोन कि ये स्मार्टफोन से ज्यादा खुशी मिलती है, स्मार्टफोन से यूज करने ज्यादा आनंद मिलता है, तो इसको ज्यादा यूज किया जाए। और एक स्किल है, उसे बोलते हैं नो फोन जोन्स। घर में जो है पेरेंट्स को और युवकों को हमें कॉमनली डिसाइड करना पड़ेगा कि जो बेडरूम है और जो आपका स्टडी रूम है, वहां पे फोन किसी का भी नहीं जाएगा, ना पेरेंट्स का जाएगा और ना ही बच्चों का जाएगा। तो उसको नो फोन जोन डिक्लेयर करना। और आखिरी है, हम बोलते हैं जैसे हम उपवास रखते हैं खाने का उपवास, उसी तरह से डिजिटल फास्टिंग करना।
1: अच्छा।
0: तो डिजिटल फास्टिंग में हम पूरा दिन के लिए प्रपोज करते हैं, लेकिन ये कई बार नहीं सक्सेसफुल हो पाता है। तो जो सक्सेसफुल हुआ है, हमने देखा है अपने यूकोमो में, हमने हमारे क्लिनिक में, वो आधे दिन सुबह उठते हैं लगभग जो भी 9 बजे या 7 बजे उठते हैं, वहां से लेके 5-6 घंटा 1-2 बजे तक वो कर पाते हैं। तो अगर कहीं से भी आप शुरुआत करते हैं 2-3 घंटे से ही फास्टिंग करना, तो अच्छी बात है। देखिए कि कितने देर तक आप जा सकते हैं। हफ्ते में एक दिन कोशिश करिए कोई आधा दिन जो है आप फास्टिंग अगर कर सकें, क्योंकि इससे जो है आपको जो ये जो टेक्नोलॉजी यूज़ है या स्मार्टफोन एडिक्शन है, इससे आप अपने आप को दूर रख पाएंगे। तो ये कुछ हेल्दी यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी स्किल्स हैं जो कि बहुत आवश्यक हैं, और इस समय लर्न करना भी बहुत ज़रूरी हो गया, क्योंकि अगर आप इसे नहीं लर्न करेंगे तो ये टेक्नोलॉजी जिस तरीके से बढ़ रही है और जिस तरह से इसके न्यू एप्लीकेशन और फीचर्स आ रहे हैं, ये आपको यूज़ करेंगे, टेक्नोलॉजी आपको यूज़ कर रही है, आप टेक्नोलॉजी को यूज़ नहीं कर रहे हैं।
1: बिल्कुल, बहुत ही अच्छी बात कही सर आपने आखिर में कि टेक्नोलॉजी हम नहीं यूज कर रहे, हमें टेक्नोलॉजी यूज कर रही है। आप सुन रहे वेणु धोनी 90.4 FM KLE कनसू, और आज के इस विशेष प्रोग्राम में मोबाइल एडिक्शन के ऊपर बात चल रही है। हमारे साथ है डॉक्टर नितिन आनंद, जो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो साइंसेस निमांस बेंगलुरु में क्लिनिकल साइकोलॉजी के प्रोफेसर है। सर बहुत अच्छी अच्छी बातें हमने अब तक डिस्कस की, और ये जो मोबाइल एडिक्शन है उसके बारे में बहुत ही इम्पोर्टेंट बातें आपने बताई। ये जो डिजिटल डिटॉक्स है वो क्या है, और इसे दैनिक जीवन में हम कैसे अपना सकते हैं?
0: जो डिजिटल डिटॉक्स है, ये अभी मैंने जो पहले बताया कि हेल्दी यूज ऑफ टेक्नोलॉजी स्किल्स, उसका एक नेक्स्ट लेवल है।
1: अच्छा,
0: जैसे डिजिटल डिटॉक्सिफिकेशन जो है, उसमें हमें कुछ समय तक, हमें पहले से निर्धारित करें कि हमें कितने समय तक इसका यूज नहीं करना है और उसको हमें उससे दूर रहना है। तो मिनिमम जो होता है वो कम से कम एटलीस्ट स्टार्ट करना पड़ता है 3 घंटे से डिजिटल डिटॉक्स करना अपने आप को। डिटॉक्स मतलब जब हम टेक्नोलॉजी से दूर रहें, जब हम दूर रहेंगे तो हमें वो समय उससे फ्री मिलेगा, और उस टाइम पे हम जो भी अपनी बाकी दिनचर्या के कार्य हैं वो करने हैं, वो सारे हमें कर सकते हैं। तो इसमें बहुत सारी स्टडीज की गई हैं, और मैं कुछ स्टडीज के ऊपर आपको एक समरी में बताना चाहूँगा। ये जो स्टडीज की गई हैं, ये बाकी बहुत सारे देशों में की गई हैं, इसमें यूनाइटेड स्टेट्स, ऑस्ट्रेलिया, यूके और साउथ कोरिया में ये वैज्ञानिक प्रयोग किया गया है कि डिजिटल डिटॉक्सिफिकेशन जब करा आता है तो उसके क्या क्या बेनिफिट हैं। तो पहला तो पाया गया कि अगर आप डिजिटल डिटॉक्स करते हैं अपने आप को, और कुछ निर्धारित समय के लिए अपने आप से प्रण लेते हैं कि हमें यूज नहीं करना है टेक्नोलॉजी, तो ये पाया गया कि जो ड्यूरेशन ऑफ यूज है, मतलब जितने समय तक आप यूज करते थे पहले अपना स्मार्टफोन, वो 6 स्टडी में उन्होंने प्रयोग किया और 6 की 6 में पाया गया कि ये सफल रहा। दूसरा होता है सेल्फ रेगुलेशन। मोबाइल फोन जो होता है, हमारा सेल्फ रेगुलेशन बहुत ही कम कर देता है। हमारा खुद पे, हमारा खुद मनोबल पे खुद रेगुलेट करना चीजों को बहुत पुअर हो जाता है। तो ये पाया गया कि सेल्फ रेगुलेशन जो है वो 2 स्टडी में उन्होंने स्टडी किया, और उन्हें पाया गया कि 1 स्टडी में वो सक्सेसफुल रहा। दूसरी चीज, तीसरी चीज जो है प्रोकास्टिनेशन, मतलब जो काम आप डिले कर देते हैं कि इसे बाद में करेंगे, ये इसी की वजह से होता है। तो डिजिटल डिटॉक्सिफिकेशन पाया गया, 2 स्टडी में उन्होंने स्टडी किया और दोनों की दोनों में ये बेहतर हो गया। चौथा जो था स्लीप, डिजिटल डिटॉक्सिफिकेशन में आपकी जो है स्लीप जो है वो बेहतर हो गई, उन्होंने 1 स्टडी में पाया गया कि ये बेहतर हो गई। ओवरऑल लाइफ सेटिस्फेक्शन जो है वो पाया गया, 8 स्टडी में उन्होंने स्टडी किया था, और उन्हें 4 में से 8 में ये पाया गया कि लोगों का जो सेटिस्फेक्शन है लाइफ से वो बेहतर हो गया जब उन्होंने ये डिजिटल डिटॉक्सिफिकेशन किया। तो ये सब चीज़ों से करने से ये पाया गया है कि आपके जो बाकी चीज़ों में जो डिफिकल्टी चल रही हैं वो धीरे धीरे कम हो जाती हैं। तो डिजिटल डिटॉक्सिफिकेशन है कि कुछ निर्धारित समय के लिए आप जो है धीरे धीरे उसको बढ़ाएं। तो हम स्टार्ट कर सकते हैं डिजिटल फास्टिंग से, लेकिन डिजिटल डिटॉक्सिफिकेशन मिनिमम 3 घंटे स्टार्ट होता है और ये 2 हफ्ते तक जाता है। जिनको जो माइल्ड टू मॉडरेट डिफिकल्टी, जिनको माइल्ड है, वो कम से कम दिन का अपना 3 घंटा डिजिटल डिटॉक्सिफिकेशन करें।
1: अच्छा।
0: जो मॉडरेट सिवेरिटी के लोग हैं, जिनको लगता है कि उनमें ज़्यादा है, अगर कोई भी 3 घंटे से अराउंड कर रहा है तो उसे माइल्ड कैटेगरी माना जाएगा। जो 3 से 6 घंटे यूज़ करता है लेजर टाइम एक्टिविटीज़ के लिए, उसको मॉडरेट कैटेगरी मान सकते हैं। जो 6 घंटे से ज़्यादा या 5 या 6 घंटे से ज़्यादा मोबाइल फ़ोन यूज़ कर रहा है, काम के लिए नहीं, पढ़ाई के लिए नहीं, लेकिन सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए, लेजर टाइम एक्टिविटीज़ के लिए, वो सिवियर कैटेगरी में लगभग आ रहा है, तो उसको जो डिजिटल डिटॉक्स डिटॉक्सिफिकेशन है, कम से कम धीरे धीरे स्टार्ट करके उसको दिन का कम से कम कुछ नहीं तो 5 घंटा या 4 घंटा से शुरू करना है धीरे धीरे। तो इसी तरह से अपनी धीरे धीरे कैपेसिटी बढ़ानी है, और बाकी जो चीज़ें जिनमें आपको टाइम देना है, आपके रिलेशनशिप्स में, आपके पढ़ाई में, आपके ऑफिस के कार्य में, कोई नया स्किल लर्न करने के लिए, कोई नई हॉबीज लर्न करने के लिए, ऑफलाइन सोशल इंटरेक्शंस के लिए, फैमिली रिचुअल्स के लिए, क्योंकि ये सारा टाइम यहीं से निकाल के आपने मोबाइल फोन को दिया है। और अगर आप इन एक्टिविटीज में टाइम अगर नहीं देंगे तो मानसिक तकलीफें और मानसिक डिफिकल्टीज, चैलेंजेस इन सारे रिलेशनशिप्स में आएंगी, चाहे वो रिलेशनशिप्स में हो, ऑफिस वर्क में हो, एकेडमिक वर्क में हो, अपनी फ्रेंडशिप्स में हो, या फिर आपके कोई नए स्किल लर्निंग की एक्टिविटीज में हो। और हमने यही पाया गया है कि देखा गया रिसर्च में कि न्यू स्किल लर्निंग अब जो युवकों में है धीरे कम हो रही है, क्योंकि सारा समय जो फ्री समय मिलता था उन्हें वो अब स्मार्टफोन में जा रहा है।
1: करेक्ट सर, हम हमारे श्रोताओं को क्या बताएंगे कुछ इजी टिप्स जिससे मोबाइल उपयोग का वो कम यूज करें?
0: ओके, सो इजी टिप्स में हम ये कह सकते हैं कि सबसे पहले कोशिश करें कि एक तो नो फोन जोन्स, जैसे मैंने पहले बताया था कि अपने घर में निर्धारित करें कि नो फोन जोन्स कौन सी हो सकती हैं। वो हर किसी के घर में अलग अलग हो सकती हैं, तो पहले नो फोन जोन डिसाइड कीजिए, जिससे कि आपको मोबाइल फोन यूज करने में रेगुलेशन आएगा। और ये हेल्दी यूज ऑफ टेक्नोलॉजी क्यों जरूरी है, क्योंकि हम इसमें एब्सटिनेंस नहीं कर सकते। एब्सटिनेंस मतलब पूरा इससे परहेज नहीं कर सकते।
1: अच्छा,
0: हमको यूज तो करना पड़ेगा
1: बिल्कुल,
0: लेकिन उसको हम रेगुलेट कैसे करें? तो पहला है कि नो फोन जोन्स अपने घर में निर्धारित करें, अपने लिए निर्धारित करें, जिससे कि आपका टेक्नोलॉजी पे यूज, जो टेक्नोलॉजी पे जो रेगुलेशन है वो बढ़े, ना कि टेक्नोलॉजी आपको कंज्यूम करे। दूसरा है, जैसे मैंने डिसाइड किया कि अपने नोटिफिकेशन जो हैं कोशिश करें इनको अगर साइलेंट मोड में रखें। तीसरा है कि अपना डेली डिसाइड करना है कि इवनिंग में किस समय के बाद आप जो है नोटिफिकेशंस देखेंगे नहीं। अच्छा। शाम में कुछ समय के बाद। चौथा है कि हमें, जैसे मैंने बताया फोन बास्केट का स्किल, तो शाम में अपना फोन जो है हमें एक बास्केट के अंदर डाल देना है, चाहे लैपटॉप हो, चाहे फोन हो, चाहे और भी कोई टेक्नोलॉजिकल डिवाइस हो, और ऑफलाइन एक्टिविटीज में हमें समय बिताने की कोशिश करनी, चाहे वो फ्रेंड्स के साथ हो, फैमिली मेंबर्स के साथ हो, या कोई नया स्किल लर्न करना हो, या कोई और माध्यम से हमें आपको अपने आप को रिलैक्स करना हो, वो हमें वापस सीखना पड़ेगा। पांचवी चीज़, जब भी किसी से बात करें तो कोशिश करें कि फ़ोन को अपनी पॉकेट में रखें और फिर बात करें। इससे आपके रिश्तों में जो इमोशनल सेटिस्फेक्शन जो आपको मिलेगा वो बेहतर होगा, और आपका रिश्ता भी घनिष्ठ बनेगा। नहीं तो वो धीरे धीरे रिश्तों में प्रॉब्लम्स आने लग जाती हैं, और उसकी वजह से फिर आपका मन करता है कि ठीक है मोबाइल फ़ोन यूज़ करें। और एक और है कि डिजिटल फास्टिंग, जो बताया था मैंने कि डिजिटल फास्टिंग करने की कोशिश करें, जिससे कि आपको अपने खुद पे नियंत्रण जो है, जिसे बोलते हैं इंग्लिश में सेल्फ रेगुलेशन, वो बेहतर हो जाएगा। तो हो सके तो अगर आप मिनिमम, या अगर आप 1 घंटे से भी स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन हम रिकमेंड करते हैं कि कम से कम 2 घंटे से एटलीस्ट स्टार्ट करें।
1: अच्छा।
0: कोशिश करें कि 2 घंटा बिना मोबाइल फोन को यूज करें वे बिताना है आपको प्रतिदिन। धीरे धीरे उससे स्टार्ट करें और फिर देखें उसको बढ़ाएं। तो अगर ये सारी एक्टिविटीज आप धीरे धीरे अपने दिनचर्या में, अपने डेली शेड्यूल में लाएंगे तो वो बेहतर होगा। और हाँ, रात को डिनर के बाद फोन को हाथ नहीं लगाना है, क्योंकि रिसर्च में ये भी पाया गया है कि जब वो रात के में जब ये फोन हाथ में आ जाता है तो वो डिनर के बाद में वो कैसे 2 घंटे निकल जाते हैं पता ही नहीं लगता है।
1: बिल्कुल।
0: और ये स्टडीज में पाया गया कि लगभग इंडिया में 60-90 मिनट्स का स्लीप का डिले हो गया है, स्लीप स्टार्ट होने में डिले हो जाता है। तो इन सब चीजों का अगर ध्यान रखें तो ये चीजें बेहतर हो सकती हैं।
1: बिल्कुल। आज का जो टॉपिक है वो बहुत ही बर्निंग इशू है अभी का। सबको मोबाइल की इतनी आदत लग चुकी है कि वो अभी छुड़वाना, मेरे ख्याल से अभी काउंसलिंग की भी जरूरत पड़ती है उसके लिए, तो वो भी लेना पड़ता है। और उसको लेके, मतलब मोबाइल का यूज जो हम कर रहे हैं, मोबाइल एडिक्शन जो हमें हुआ है, उसको लेके क्या हो सकता है मानसिक रूप में और शारीरिक रूप में, वो आपने बहुत अच्छी तरह से समझाया सर। और इस टॉपिक पे बात करने के लिए हमें समय दिया, उसके लिए थैंक यू सो मच।
0: थैंक यू।
1: ये था आज का विशेष प्रोग्राम जो हम केली वेणुधोनी 90.4 एफएम पे सुन रहे थे। हमारे साथ थे डॉक्टर नितिन आनंद, जो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो साइंसेस बेंगलुरु में क्लिनिकल साइकोलॉजी के प्रोफेसर हैं। उसी के साथ साथ निमांस के सर्विस फॉर हेल्दी यूज ऑफ टेक्नोलॉजी क्लिनिक में विशेष तज्ञ सलाहकार के रूप में वो कार्यरत है। ये भारत का पहला टेक्नोलॉजी डी एडिक्शन क्लिनिक है, जहाँ इंटरनेट, सोशल मीडिया, गेमिंग और जुआ की लत से जुड़ी समस्याओं के लिए विशेष उपचार और परामर्श दिया जाता है, खासकर किशोरों और युवाओं के लिए। इसके अलावा वो स्पेशलिटी ओबेसिव डिसऑर्डर क्लिनिक में भी मनोवैज्ञानिक मूल्यांकन और उपचार प्रदान करते हैं, जो इस प्रकार का भारत में शुरू किया गया पहला विशेष क्लिनिक है। उनको हम सुन रहे थे और आज का विषय था मोबाइल एडिक्शन, उसके बारे में बहुत ही महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन हमें दी गई है। कैसा था आज का एपिसोड जरूर बताइए। नंबर है 9019904904। ये है केली वेणुधोनी 90.4 एफएम की प्रस्तुति। नमस्कार।

हेलो नमस्कार एंड गुड इवनिंग, कैसे हैं आप लोग? देखकर लग रहा है एकदम खुश है, एंजॉय कर रहे हैं और मजे ले रहे हैं आज के शाम के। दोस्तों जैसे कि आप जानते हैं, मैं हूं आप सभी का प्यारा दुलारा हैंडसम दोस्त और होस्ट आरजे आयुष, और आपने ट्यून किया है बेलगावी का सबसे बड़ा और पहला रेडियो स्टेशन वेनु ध्वनि 90.4 FM KLE का नसु। और हमारा प्राइम शो भी रिलैक्स चल रहा है, जहां आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसे सीजन पर जिसमें एटमॉस्फेयर तो जरूर चेंज नहीं होता, लेकिन आपके घर का एटमॉस्फेयर हमेशा के लिए चेंज होने लगता है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ वेडिंग सीजन की, यानी शादियों की। दोस्तों सर्दियां आ रही हैं और सबको पता है विंटर सीजन आते ही वेडिंग्स बहुत ही ज्यादा बढ़ जाती है, शादियों का सीजन एकदम धूमधाम से नजदीक आने लगता है, और सर्दियों में क्या क्या धमाल होता है, करेंगे बात आज उसी सिचुएशंस पर। तो आप हो जाइए तैयार, सिट बैक एंड रिलैक्स, एंजॉय योर फेवरेट शो विद योर फेवरेट आरजे आयुष, एंड कीप लिसनिंग टू वेनु ध्वनि 90.4 FM KLE का नसु।

One more time, दोस्तों, to your favorite show, Be Relaxed, जिसको सुनकर आप हो जाते हैं एकदम रिलैक्स। और मैं आज आयुष आपके साथ बना हुआ हूँ और आज हम बात कर रहे हैं वेडिंग के उस धमाकेदार सीजन के बारे में जहाँ हम बात करेंगे इंडियन वेडिंग्स के यानी ट्रेडिशंस के बारे में। दोस्तों, इंडिया में सर्दियों का बहुत ही ज्यादा क्रेज है और इट्स नॉट जस्ट अ मैट्रिमोनियल सेरेमनी, देयर आर द सेलिब्रेशन दैट ब्लेंड ट्रेडिशन, कल्चर एंड फेस्टिविटी। और ये शादियां जानी जाती है उनके रिवाजों के लिए, परिवार के साथ के लिए। शादियां सिर्फ दो लोगों का मिलन ही नहीं होता, ये परिवारों का मिलना होता है, उनसे जुड़ना होता है। जब दो कम्युनिटीज आपस में मिलती है तब जाकर एक रिश्ता बनता है। अब बताइए, आपके लिए शादियां क्या है? और जब भी शादियां नजदीक आती है हमारी एक्साइटमेंट भी, साथ ही जिम्मेदारियां भी एकदम बढ़ जाती है। कपड़ों से लेकर खाने तक सबका ख्याल रखना पड़ता है। सच कहूं तो जिनकी शादियां होनी होती है उनसे कई ज्यादा एक्साइटेड और एक्साइटमेंट हमें बनी होती है, बाकी की परिवार वाले और फ्रेंड्स वाले तो है ही साथ में। चलिए, फिर शादी की बात हो तो म्यूजिक की बात ना हो ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता। तो सुनाएंगे आपको कुछ जबरदस्त गाने, तो सुनते रहिए मेरे साथ वेनु ध्वनि 90.4 FM KLE का नसू।

का एक बार फिर आप सभी के पसंदीदा शो बी रिलैक्स में और आप सुन रहे हैं वीनू ध्वनि 90.4 एफएम की एलई कनसू विद आरजे आयुष। दोस्तों, इंडिया इज अ लैंड ऑफ डाइवर्सिटी और यही डाइवर्सिटी वेडिंग्स में भी साफ झलकती है। हर रीजन और कम्युनिटी का एक अपना रिचुअल है, एक अपना तरीका है या स्टाइल है, आप कह सकते हैं एक ट्रेडिशन है जो वो फॉलो करते हैं ड्यूरिंग देयर वेडिंग सेरेमनीज और शादियों में। वेदर इट्स द कलरफुल एंड द इलैबोरेट रिचुअल्स ऑफ अ हिंदू वेडिंग और द सिंपलिसिटी एंड द एलिगेंस ऑफ मुस्लिम निकाह, और यू कैन से द वाइब्रेंट सेलिब्रेशन ऑफ अ पंजाबी सिख वेडिंग, द डाइवर्सिटी इज एस्टाउंडिंग। और पता है इन सब कल्चर्स के साथ वेडिंग की एक खासियत होती है और वो क्या है? वो है खाना। भैया, शादियों में खाने का आनंद ही कुछ और होता है और वो बहुत ही अद्भुत अनुभव होता है। अब बताएं, आप भी अगर शादियों में जाते हैं या शादियों का नाम सुनते हैं तो पहली चीज आपके दिमाग में क्या आती है? उम्मीद है वो खाना ही आता होगा। तो आप सोचिए, लेकिन मैं आपको सुनाऊंगा कुछ जबरदस्त गाने। तो आपको क्या करना है, आपको कर लेनी है आपके रेडियो की वॉल्यूम एकदम फुल और सुनते रहना है वेणु ध्वनि 90.4 एफएम के एलई का नसु। परम परम पम पम पम परम पम परम परम।

वेलकम वेलकम वेलकम लेडीज एंड जेंटलमैन एंड पीपल ऑफ ऑल द एजेस, आप सुन रहे हैं बेलगम का सबसे बड़ा और पहला रेडियो स्टेशन वेनु ध्वनि 90.4 एफएम KLE कनसू। चलिए दोस्तों, बात करते हैं कुछ प्री वेडिंग सेरेमनीज के बारे में। इंडियन वेडिंग्स देखा जाए तो एक सीरीज ऑफ इवेंट्स की है जो शुरू होता है कई दिन या वीक पहले, बिफोर द एक्चुअल वेडिंग डे। कई सारी सेरेमनीज जो शादी के पहले होती है, जैसे आप सभी की फेवरेट मेहंदी वेद हेना डिजाइन आर अप्लाइड टू द ब्राइड हैंड्स एंड द फीट, हल्दी सेरेमनी एंड ऑफ कोर्स संगीत नाइट फिल्ड विथ म्यूजिक एंड डांस, और ऐसे ही कई सारे रिचुअल्स हैं जो वैरी करते हैं रीजन टू रीजन। चलिए बात करें कुछ द एक्चुअल वेडिंग डे की उन सेरेमनीज के बारे में जो शायद आपको पता ना हो। तो जानने के लिए बने रहिए मेरे साथ और सुनते रहिए वेणु ध्वनि 90.4 FM।

दोस्तों इतनी सब सेरेमनीज के बाद जब एक्चुअल वेडिंग डे आता है तो हमारी एक्साइटमेंट थोड़ी सी दुगनी हो जाती है, क्योंकि इतने इंतजार के बाद फाइनली वो डेट नजदीक आने लगती है तो खुशी तो ऑफकोर्स दुगनी हो ही जाएगी। तो दोस्तों शादी के दिन की शुरुआत ऑफकोर्स आपको पता ही होगा बारात से होती है। इट्स लाइक अ प्रोसेशन जिसमें दूल्हा या जिसको आप वर कहते हैं वो आता है वेडिंग वेन्यू पर या तो घोड़े पर सवार होके या तो फिर गाड़ी में, जिसमें साथ में ऑफकोर्स होते हैं दूल्हे की फैमिली और शरारती दोस्त जो पूरी शादी में धमाल मचा देते हैं। द ब्राइड रेसिप्लेंडेंट इन अ ब्राइडल अटायर अवेट्स द ग्रूम अंडर अ ब्यूटीफुल अडॉर्न्ड मंडप एंड ऑफकोर्स फिर वरमाला और कई सारे वचन और वो मंत्रों की गूंज और साथ ही हाथों में सिंदूर और सात फेरे। एक पल के लिए मुझे लगता है मैंने आपको एक इमेजिनरी शादी में भेज दिया। जैसे प्री वेडिंग सेरेमनीज होती है वैसे ही पोस्ट भी होती है। करेंगे बात पोस्ट वेडिंग सेरेमनीज की, पर उससे पहले सुनाएंगे आपको कुछ जबरदस्त गाने। तो सुनते रहिए हमारा और आप सभी का फेवरेट शो बी रिलैक्स।

बैक वन मोर टाइम दोस्तों टू योर फेवरेट शो एंड आप सुन रहे हैं बी रिलैक्स और मैं हूं आरजे आयुष आपके साथ हमेशा बना हुआ हूं। और हमारी आज बातचीत चल रही है द ग्रेट इंडियन वेडिंग्स पर। दोस्तों बात करते हैं कुछ पोस्ट मैरिज रिचुअल्स की, जो जैसे ही शादी खत्म होती है वैसे ही पोस्ट वेडिंग रिचुअल्स होते हैं। जब दुल्हन अपने ससुराल जाती है यानी लड़के वालों के घर जाती है तो भैया गेम्स, न्यूली वेडिंग कपल्स के बीच गेम्स होते हैं वो खेले जाते हैं, बड़ों का आशीर्वाद लिया जाता है। और ऑफ कोर्स एक चीज तो मैं भूल ही गया, जो शादी के तुरंत बाद होती है वो है द इमोशनल विदाई सेरेमनी, जहां दुल्हन अपने परिवार से अलग होकर एक नए परिवार का हिस्सा बनने जाती है। देखिए शादियां खुशियां तो लाती है लेकिन साथ में थोड़ा सा इमोशनल भी करके चली जाती है, क्योंकि आपके परिवार की बेटी अगर दूसरे घर में जाती है तो थोड़ा सा अकेलापन आपको लगता है, पर एक तरह से ये खुशी का पल भी होता है। आप बताइए आप किसकी विदाई पर सबसे ज्यादा रोए थे या रोने वाले हैं, मुझे सोचिए और बताइए। तब तक मैं आपको सुनाता हूँ कुछ जबरदस्त गाने, तो सुनते रहिए मेरे साथ वेनु ध्वनि 90.4 FM KLE कनसू।

हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर। और आप सभी का पसंदीदा शो बी रिलैक्स चल रहा है। आप सुन रहे हैं वेणु ध्वनि 90.4 FM के LE कनासू विद RJ आयुष। अब देखिए दोस्तों, मैंने आपको इंडियन वेडिंग का ऑलमोस्ट एक मोटा मोटा आइडिया दे दिया है, लेकिन उसमें एक चीज ऐसी है जो छूट गई है, वो बताइए क्या। जी हाँ, आप सही समझे भैया, वो है रिसेप्शन यानी फीस्ट। बारात में शादियां हो और खाने की बात ना हो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता। हम जाने ही मेहमान नवाजी के लिए आते हैं रिसेप्शन में। जैसे कि आप जानते हैं, गेस्ट आर ट्रीटेड टू अ वाइडली अरे ऑफ कल्लिनरी डिलाइट्स इंक्लूडिंग रीजनल स्पेशलिटीज, स्वीट्स एंड बेवरेजेस। और हमारा खाना, हमारे मसाले, क्या ही कहना। मैं भी अपने किसी दोस्त की शादी का बेसब्री से इंतजार कर रहा हूँ, तब तक मैं पेट भर के खाना नहीं

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे किसी नजर को तेरा आज भी इंतजार है। डिम्बल कपाड़िया और सुरेश ओबेरॉय के ऊपर फिल्माया गया ये सॉन्ग, और इसी गाने के साथ मनीषा अलविदा कहती है फिर आऊंगी आपके दिल को छूने कुछ सदाबहार नगमों के साथ, और तब तक आप भी खुश रहिए और अपनों को भी खुश रखने की कोशिश कीजिए, क्या पता कल हो ना हो। गुड नाइट।

नमस्कार दोस्तों, आपने ट्यून किया है पेणुथोनी 90.4 KLE कलसो और यादों की बारात में मनीषा आपका दिल से स्वागत करती है। दोस्तों, यादों की बारात में हम कुछ ऐसे नगमे सुनेंगे जो आपके दिल के करीब थे, जो भूले बिसरे गीत रहने के बावजूद भी आप कभी भूल न पाए। तो चलिए, आपकी यादों को ताजा करने के लिए मनीषा लेके आई है यादों की बारात।

जिसमें पहला गाना हम सुनेंगे तेरे मेरे बीच में कैसा है ये बंधन, एक दूजे के लिए मूवी का ये सॉन्ग है। कमल हसन और रति अग्निहोत्री पे फिल्माया गया ये गीत तेरे मेरे बीच में कैसा है ये बंधन अनजाना। ये फिल्म आई थी 1981 में। गाने को आवाज दी है लता मंगेशकर और एस पी बाल सुब्रमण्यम जी ने। तो चलिए सुनते हैं प्यारा सा और सुपरहिट सॉन्ग।

अगला गाना हम सुनेंगे शीशा हो या दिल हो आखिर टूट जाता है, लता मंगेशकर जी की आवाज में एक खूबसूरत सा सॉन्ग जो है आशा मूवी से। ये मूवी आई थी 1980 में जिसमें अभिनय किया है जितेंद्र और रीना रॉय ने। तो चलिए सुनते हैं खूबसूरत सा गीत शीशा हो या दिल हो आखिर टूट जाता है।

यादों की भारत में अगला गाना मैं आपको सुनवाने जा रही हूँ, जो है दिल मूवी से। ये मूवी आई थी 1990 में। गाने की बोल है मुझे नींद ना आए। आमिर खान और माधुरी दीक्षित का अभिनय, अनुराधा पौडवाल और उदित नारायण की आवाज में एक खूबसूरत सा नगमा आपके लिए, जिसको म्यूजिक दिया है आनंद श्रीवास्तव और मिलिंद श्रीवास्तव जी ने।

धुनी 90.4 के LE कनसू पे आप ट्यून है। यादों के बारात हमारा प्रोग्राम चल रहा है और अगला गाना मैं आपको सुनवाने जा रही हूँ जो है हीरो मूवी से। 1983 में ये मूवी आई थी जो बहुत ही सुपरहिट रही। इसके गाने भी बहुत ही खूबसूरत है। इसी में से एक गाना हम सुनेंगे जो है तू मेरा हीरो है।

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे जब कोई बात बिगड़ जाए। यह है जुर्म मूवी का गाना और विनोद खन्ना और मीनाक्षी शेषाद्री का अभिनय। कुमार सानू की आवाज में अगला गीत आपके लिए।

है सारी रात हम। किशोर कुमार और लता मंगेशकर जी की आवाज में एक खूबसूरत सा नगमा जो है आपकी कसम से, 1974 की मूवी है। तो चलिए सुनते हैं प्यारा सा गीत जो फिल्माया गया है राजेश खन्ना और

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे पैसा सावन मूवी से। ये मूवी आई थी 1981 में। गाना है मेघारे मेघारे। लता मंगेशकर और सुरेश वाडकर जी की आवाज में अगला सॉन्ग आपके लिए, जो फिल्माया गया है जितेंद्र और मौसमी चटर्जी के ऊपर।

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे, किसी नजर को तेरा आज भी इंतजार है। डिम्बल कपाड़िया और सुरेश ओबेरॉय के ऊपर फिल्माया गया ये सॉन्ग, और इसी गाने के साथ मनीषा अलविदा कहती है, फिर आऊंगी आपके दिल को छूने कुछ सदाबहार नगमों के साथ, और तब तक आप भी खुश रहिए और अपनों को भी खुश रखने की कोशिश कीजिए, क्या पता कल हो ना हो। गुड नाइट।

नमस्कार दोस्तों, आपने ट्यून किया है वेणु थोड़ी 90.4 KLE कलसो और यादों की बारात में मनीषा आपका दिल से स्वागत करती है। दोस्तों, यादों की बारात में हम कुछ ऐसे नगमे सुनेंगे जो आपके दिल के करीब थे, जो भूले बिसरे गीत रहने के बावजूद भी आप कभी भूल न पाए। तो चलिए, आपकी यादों को ताजा करने के लिए मनीषा लेके आई है यादों की बारात।

जिसमें पहला गाना हम सुनेंगे तेरे मेरे बीच में कैसा है ये बंधन, एक दूजे के लिए मूवी का ये सॉन्ग है। कमल हसन और रति अग्निहोत्री पे फिल्माया गया ये गीत तेरे मेरे बीच में कैसा है ये बंधन अनजाना। ये फिल्म आई थी 1981 में। गाने को आवाज दी है लता मंगेशकर और एस पी बाल सुब्रमण्यम जी ने। तो चलिए सुनते हैं प्यारा सा और सुपरहिट सॉन्ग।

अगला गाना हम सुनेंगे शीशा हो या दिल हो आखिर टूट जाता है, लता मंगेशकर जी की आवाज में एक खूबसूरत सा सॉन्ग जो है आशा मूवी से। ये मूवी आई थी 1980 में जिसमें अभिनय किया है जितेंद्र और रीना रॉय ने। तो चलिए सुनते खूबसूरत सा गीत शीशा हो या दिल हो आखिर टूट जाता है।

यादों की भारत में अगला गाना मैं आपको सुनवाने जा रही हूँ, जो है दिल मूवी से। ये मूवी आई थी 1990 में। गाने के बोल है मुझे नींद ना आए, आमिर खान और माधुरी दीक्षित का अभिनय, अनुराधा पौडवाल और उदित नारायण की आवाज में एक खूबसूरत सा नगमा आपके लिए, जिसको म्यूजिक दिया है आनंद श्रीवास्तव और मिलिंद श्रीवास्तव जी ने।

थोड़ी 90.4 के LE कनसो पे आप ट्यून है। यादों के बारात हमारा प्रोग्राम चल रहा है और अगला गाना मैं आपको सुनवाने जा रही हूँ जो है हीरो मूवी से। 1983 में ये मूवी आई थी जो बहुत ही सुपरहिट रही। इसके गाने भी बहुत ही खूबसूरत है। इसी में से एक गाना हम सुनेंगे जो है तू मेरा हीरो है।

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे जब कोई बात बिगड़ जाए। यह है जुर्म मूवी का गाना और विनोद खन्ना और मीनाक्षी शेषाद्री का अभिनय। कुमार सानू की आवाज में अगला गीत आपके लिए।

बदलते रहे सारी रात हम। किशोर कुमार और लता मंगेशकर जी की आवाज में एक खूबसूरत सा नगमा जो है आपकी कसम से, 1974 की मूवी है। तो चलिए सुनते हैं प्यारा सा गीत जो फिल्माया गया है राजेश खन्ना और

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे पैसा सावन मूवी से। ये मूवी आई थी 1981 में। गाना है मेघारे मेघारे। लता मंगेशकर और सुरेश वाडकर जी की आवाज में अगला सॉन्ग आपके लिए, जो फिल्माया गया है जितेंद्र और मौसमी चटर्जी के ऊपर।

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे, किसी नजर को तेरा आज भी इंतजार है। डिम्बल कपाड़िया और सुरेश ओबेरॉय के ऊपर फिल्माया गया ये सॉन्ग, और इसी गाने के साथ मनीषा अलविदा कहती है, फिर आऊंगी आपके दिल को छूने कुछ सदाबहार नगमों के साथ, और तब तक आप भी खुश रहिए और अपनों को भी खुश रखने की कोशिश कीजिए, क्या पता कल हो ना हो। गुड नाइट।

नमस्कार दोस्तों, आपने ट्यून किया है पेणुथोनी 90.4 KLE कलसो और यादों के बारात में मनीषा आपका दिल से स्वागत करती है। दोस्तों, यादों के बारात में हम कुछ ऐसे नगमे सुनेंगे जो आपके दिल के करीब थे, जो भूले बिसरे गीत रहने के बावजूद भी आप कभी भूल न पाए। तो चलिए, आपकी यादों को ताजा करने के लिए मनीषा लेके आई है यादों की बारात।

जिसमें पहला गाना हम सुनेंगे तेरे मेरे बीच में कैसा है ये बंधन। एक दूजे के लिए मूवी का ये सॉन्ग है। कमल हसन और रति अग्निहोत्री पे फिल्माया गया ये गीत तेरे मेरे बीच में कैसा है ये बंधन अनजाना। ये फिल्म आई थी 1981 में। गाने को आवाज दी है लता मंगेशकर और एस पी बाल सुब्रमण्यम जी ने। तो चलिए सुनते हैं प्यारा सा और सुपरहिट सॉन्ग।

अगला गाना हम सुनेंगे शीशा हो या दिल हो आखिर टूट जाता है, लता मंगेशकर जी की आवाज में एक खूबसूरत सा सॉन्ग जो है आशा मूवी से। ये मूवी आई थी 1980 में जिसमें अभिनय किया है जितेंद्र और रीना रॉय ने। तो चलिए सुनते खूबसूरत सा गीत शीशा हो या दिल हो आखिर टूट जाता है।

यादों की भारत में अगला गाना मैं आपको सुनवाने जा रही हूँ, जो है दिल मूवी से। ये मूवी आई थी 1990 में। गाने के बोल है, मुझे नींद ना आए। आमिर खान और माधुरी दीक्षित का अभिनय, अनुराधा पौडवाल और उदित नारायण की आवाज में एक खूबसूरत सा नगमा आपके लिए, जिसको म्यूजिक दिया है आनंद श्रीवास्तव और मिलिंद श्रीवास्तव जी ने।

टूनी 90.4 के LE कनसो पे आप ट्यून है, यादों के बारात हमारा प्रोग्राम चल रहा है और अगला गाना मैं आपको सुनवाने जा रही हूँ जो है हीरो मूवी से। 1983 में ये मूवी आई थी जो बहुत ही सुपरहिट रही। इसके गाने भी बहुत ही खूबसूरत है, इसी में से एक गाना हम सुनेंगे जो है तू मेरा हीरो है।

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे जब कोई बात बिगड़ जाए। यह है जुर्म मूवी का गाना और विनोद खन्ना और मीनाक्षी शेषाद्री का अभिनय। कुमार सानू की आवाज में अगला गीत आपके लिए।

रहे सारी रात हम। किशोर कुमार और लता मंगेशकर जी की आवाज में एक खूबसूरत सा नगमा जो है आपकी कसम से, 1974 की मूवी है। तो चलिए सुनते हैं प्यारा सा गीत जो फिल्माया गया है राजेश खन्ना

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे पैसा सावन मूवी से। ये मूवी आई थी 1981 में। गाना है मेघारे मेघारे। लता मंगेशकर और सुरेश वाडकर जी की आवाज में अगला सॉन्ग आपके लिए, जो फिल्माया गया है जितेंद्र और मौसमी चटर्जी के ऊपर।

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे, किसी नजर को तेरा आज भी इंतजार है। डिम्बल कपाड़िया और सुरेश ओबेरॉय के ऊपर फिल्माया गया ये सॉन्ग, और इसी गाने के साथ मनीषा अलविदा कहती है, फिर आऊंगी आपके दिल को छूने कुछ सदाबहार नगमों के साथ, और तब तक आप भी खुश रहिए और अपनों को भी खुश रखने की कोशिश कीजिए, क्या पता कल हो ना हो। गुड।

नमस्कार दोस्तों, आपने ट्यून किया है पेरू थोड़ी 90.4 KLE कलसुम और यादों की बारात में मनीषा आपका दिल से स्वागत करती है। दोस्तों, यादों की बारात में हम कुछ ऐसे नगमे सुनेंगे जो आपके दिल के करीब थे, जो भूले बिसरे गीत रहने के बावजूद भी आप कभी भूल ना पाए। तो चलिए, आपकी यादों को ताजा करने के लिए मनीषा लेके आई है यादों की बारात।

जिसमें पहला गाना हम सुनेंगे तेरे मेरे बीच में कैसा है ये बंधन, एक दूजे के लिए मूवी का ये सॉन्ग है। कमल हसन और रति अग्निहोत्री पे फिल्माया गया ये गीत तेरे मेरे बीच में कैसा है ये बंधन अनजाना। ये फिल्म आई थी 1981 में। गाने को आवाज दी है लता मंगेशकर और एस पी बाल सुब्रमण्यम जी ने। तो चलिए सुनते हैं प्यारा सा और सुपरहिट सॉन्ग।

अगला गाना हम सुनेंगे शीशा हो या दिल हो आखिर टूट जाता है, लता मंगेशकर जी की आवाज में एक खूबसूरत सा सॉन्ग जो है आशा मूवी से। ये मूवी आई थी 1980 में जिसमें अभिनय किया है जितेंद्र और रीना रॉय ने। तो चलिए सुनते हैं खूबसूरत सा गीत शीशा हो या दिल हो आखिर टूट जाता है।

यादों की भारत में अगला गाना मैं आपको सुनवाने जा रही हूँ, जो है दिल मूवी से। ये मूवी आई थी 1990 में। गाने की बोल है मुझे नींद ना आए, आमिर खान और माधुरी दीक्षित का अभिनय, अनुराधा पौडवाल और उदित नारायण की आवाज में खूबसूरत सा नगमा आपके लिए, जिसको म्यूजिक दिया है आनंद श्रीवास्तव और मिलिंद श्रीवास्तव जी ने।

90.4 के LE कनसू पे आप ट्यून है, यादों के बारात हमारा प्रोग्राम चल रहा है और अगला गाना मैं आपको सुनवाने जा रही हूँ जो है हीरो मूवी से। 1983 में ये मूवी आई थी जो बहुत ही सुपरहिट रही। इसके गाने भी बहुत ही खूबसूरत है। इसी में से एक गाना हम सुनेंगे जो है तू मेरा हीरो है।

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे जब कोई बात बिगड़ जाए। यह है जुर्म मूवी का गाना और विनोद खन्ना और मीनाक्षी शेषाद्री का अभिनय। कुमार सानू की आवाज में अगला गीत आपके लिए।

रहे सारी रात हम। किशोर कुमार और लता मंगेशकर जी की आवाज में एक खूबसूरत सा नगमा जो है आपकी कसम से, 1974 की मूवी है। तो चलिए सुनते हैं प्यारा सा गीत जो फिल्माया गया है राजेश खन्ना

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे पैसा सावन मूवी से। ये मूवी आई थी 1981 में। गाना है मेघारे मेघारे। लता मंगेशकर और सुरेश वाडकर जी की आवाज में अगला सॉन्ग आपके लिए, जो फिल्माया गया है जितेंद्र और मौसमी चटर्जी के ऊपर।

नमस्कार दोस्तों, आपने ट्यून किया है पेड़ोथोनी 90.4 KLE कलसुम और यादों की बारात में मनीषा आपका दिल से स्वागत करती है। दोस्तों, यादों की बारात में हम कुछ ऐसे नगमे सुनेंगे जो आपके दिल के करीब थे, जो भूले बिसरे गीत रहने के बावजूद भी आप कभी भूल न पाए। तो चलिए, आपकी यादों को ताजा करने के लिए मनीषा लेके आई है यादों की बारात।

जिसमें पहला गाना हम सुनेंगे तेरे मेरे बीच में कैसा है ये बंधन। एक दूजे के लिए मूवी का ये सॉन्ग है। कमल हसन और रति अग्निहोत्री पे फिल्माया गया ये गीत तेरे मेरे बीच में कैसा है ये बंधन अनजाना। ये फिल्म आई थी 1981 में। गाने को आवाज दी है लता मंगेशकर और एस पी बाल सुब्रमण्यम जी ने। तो चलिए सुनते हैं प्यारा सा और सुपरहिट सॉन्ग।

अगला गाना हम सुनेंगे शीशा हो या दिल हो आखिर टूट जाता है। लता मंगेशकर जी की आवाज में ये खूबसूरत सा सॉन्ग जो है आशा मूवी से। ये मूवी आई थी 1980 में जिसमें अभिनय किया है जितेंद्र और रीना रॉय ने। तो चलिए सुनते हैं खूबसूरत सा गीत शीशा हो या दिल हो आखिर टूट जाता है।

यादों की भारत में अगला गाना मैं आपको सुनवाने जा रही हूँ, जो है दिल मूवी से। ये मूवी आई थी 1990 में। गाने की बोल है मुझे नींद ना आए। आमिर खान और माधुरी दीक्षित का अभिनय, अनुराधा पौडवाल और उदित नारायण की आवाज में एक खूबसूरत सा नगमा आपके लिए, जिसको म्यूजिक दिया है आनंद श्रीवास्तव और मिलिंद श्रीवास्तव जी ने।

धुनी 90.4 के LE कनसू पे आप ट्यून है। यादों के बारात हमारा प्रोग्राम चल रहा है और अगला गाना मैं आपको सुनवाने जा रही हूँ जो है हीरो मूवी से। 1983 में ये मूवी आई थी जो बहुत ही सुपरहिट रही। इसके गाने भी बहुत ही खूबसूरत है। इसी में से एक गाना हम सुनेंगे जो है तू मेरा हीरो है।

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे, जब कोई बात बिगड़ जाए। यह है जुर्म मूवी का गाना और विनोद खन्ना और मीनाक्षी शेषाद्री का अभिनय। कुमार सानू की आवाज में अगला गीत आपके लिए।

चलते रहे सारी रात हम। किशोर कुमार और लता मंगेशकर जी की आवाज में एक खूबसूरत सा नगमा जो है आपकी कसम से, 1974 की मूवी है। तो चलिए सुनते हैं प्यारा सा गीत जो फिल्माया गया है राजेश खन्ना और

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे पैसा सावन मूवी से। ये मूवी आई थी 1981 में। गाना है मेघारे मेघारे। लता मंगेशकर और सुरेश वाडकर जी की आवाज में अगला सॉन्ग आपके लिए, जो फिल्माया गया है जितेंद्र और मौसमी चटर्जी के ऊपर।

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे, किसी नजर को तेरा आज भी इंतजार है। डिम्बल कपाड़िया और सुरेश ओबेरॉय के ऊपर फिल्माया गया ये सॉन्ग, और इसी गाने के साथ मनीषा अलविदा कहती है, फिर आऊंगी आपके दिल को छूने कुछ सदाबहार नगमों के साथ, और तब तक आप भी खुश रहिए और अपनों को भी खुश रखने की कोशिश कीजिए, क्या पता कल हो ना हो। गुड नाइट।

नमस्कार दोस्तों, आपने ट्यून किया है पेणु थोड़ी 90.4 KLE कलसो और यादों की बारात में मनीषा आपका दिल से स्वागत करती है। दोस्तों, यादों की बारात में हम कुछ ऐसे नगमे सुनेंगे जो आपके दिल के करीब थे, जो भूले बिसरे गीत रहने के बावजूद भी आप कभी भूल न पाए। तो चलिए, आपकी यादों को ताजा करने के लिए मनीषा लेके आई है यादों की बारात।

जिसमें पहला गाना हम सुनेंगे तेरे मेरे बीच में कैसा है ये बंधन, एक दूजे के लिए मूवी का ये सॉन्ग है। कमल हसन और रति अग्निहोत्री पे फिल्माया गया ये गीत तेरे मेरे बीच में कैसा है ये बंधन अनजाना। ये फिल्म आई थी 1981 में। गाने को आवाज दी है लता मंगेशकर और एस पी बाल सुब्रमण्यम जी ने। तो चलिए सुनते हैं प्यारा सा और सुपरहिट सॉन्ग।

अगला गाना हम सुनेंगे शीशा हो या दिल हो आखिर टूट जाता है, लता मंगेशकर जी की आवाज में एक खूबसूरत सा सॉन्ग जो है आशा मूवी से। ये मूवी आई थी 1980 में जिसमें अभिनय किया है जितेंद्र और रीना रॉय ने। तो चलिए सुनते हैं खूबसूरत सा गीत शीशा हो या दिल हो आखिर टूट जाता है।

यादों की भारत में अगला गाना मैं आपको सुनवाने जा रही हूँ, जो है दिल मूवी से। ये मूवी आई थी 1990 में। गाने की बोल है मुझे नींद ना आए, आमिर खान और माधुरी दीक्षित का अभिनय, अनुराधा पौडवाल और उदित नारायण की आवाज़ में खूबसूरत सा नगमा आपके लिए, जिसको म्यूजिक दिया है आनंद श्रीवास्तव और मिलिंद श्रीवास्तव जी ने।

थोड़ी 90.4 के LE कनसू पे आप ट्यून है। यादों के बारात हमारा प्रोग्राम चल रहा है और अगला गाना मैं आपको सुनवाने जा रही हूँ जो है हीरो मूवी से। 1983 में ये मूवी आई थी जो बहुत ही सुपरहिट रही। इसके गाने भी बहुत ही खूबसूरत है। इसी में से एक गाना हम सुनेंगे जो है तू मेरा हीरो है।

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे, जब कोई बात बिगड़ जाए। यह है जुर्म मूवी का गाना और विनोद खन्ना और मीनाक्षी शेषाद्री का अभिनय। कुमार सानू की आवाज में अगला गीत आपके लिए।

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे, किसी नजर को तेरा आज भी इंतजार है। डिम्बल कपाड़िया और सुरेश ओबेरॉय के ऊपर फिल्माया गया ये सॉन्ग, और इसी गाने के साथ मनीषा अलविदा कहती है, फिर आऊंगी आपके दिल को छूने कुछ सदाबहार नगमों के साथ, और तब तक आप भी खुश रहिए और अपनों को भी खुश रखने की कोशिश कीजिए, क्या पता कल हो ना हो। गुड नाइट।

नमस्कार दोस्तों, आपने ट्यून किया है पेणु थोड़ी 90.4 KLE कलसो और यादों की बारात में मनीषा आपका दिल से स्वागत करती है। दोस्तों, यादों की बारात में हम कुछ ऐसे नगमे सुनेंगे जो आपके दिल के करीब थे, जो भूले बिसरे गीत रहने के बावजूद भी आप कभी भूल न पाए। तो चलिए, आपकी यादों को ताजा करने के लिए मनीषा लेके आई है यादों की बारात।

जिसमें पहला गाना हम सुनेंगे तेरे मेरे बीच में कैसा है ये बंधन, एक दूजे के लिए मूवी का ये सॉन्ग है। कमल हसन और रति अग्निहोत्री पे फिल्माया गया ये गीत तेरे मेरे बीच में कैसा है ये बंधन अनजाना। ये फिल्म आई थी 1981 में। गाने को आवाज दी है लता मंगेशकर और एस पी बाल सुब्रमण्यम जी ने। तो चलिए सुनते हैं प्यारा सा और सुपरहिट सॉन्ग।

अगला गाना हम सुनेंगे शीशा हो या दिल हो आखिर टूट जाता है, लता मंगेशकर जी की आवाज में एक खूबसूरत सा सॉन्ग जो है आशा मूवी से। ये मूवी आई थी 1980 में जिसमें अभिनय किया है जितेंद्र और रीना रॉय ने। तो चलिए सुनते खूबसूरत सा गीत शीशा हो या दिल हो आखिर टूट जाता है।

यादों की भारत में अगला गाना मैं आपको सुनवाने जा रही हूँ, जो है दिल मूवी से। ये मूवी आई थी 1990 में। गाने की बोल है मुझे नींद ना आए। आमिर खान और माधुरी दीक्षित का अभिनय, अनुराधा पौडवाल और उदित नारायण की आवाज़ में खूबसूरत सा नगमा आपके लिए, जिसको म्यूजिक दिया है आनंद श्रीवास्तव और मिलिंद श्रीवास्तव जी ने।

मधुबनी 90.4 के LE कनसो पे आप ट्यून है यादों के बारात। हमारा प्रोग्राम चल रहा है और अगला गाना मैं आपको सुनवाने जा रही हूँ जो है हीरो मूवी से। 1983 में ये मूवी आई थी जो बहुत ही सुपरहिट रही। इसके गाने भी बहुत ही खूबसूरत है। इसी में से एक गाना हम सुनेंगे जो है तू मेरा हीरो है।

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे जब कोई बात बिगड़ जाए। यह है जुर्म मूवी का गाना और विनोद खन्ना और मीनाक्षी शेषाद्री का अभिनय। कुमार सानू की आवाज में अगला गीत आपके लिए।

दे रहे सारी रात हम। किशोर कुमार और लता मंगेशकर जी की आवाज में एक खूबसूरत सा नगमा जो है आपकी कसम से, 1974 की मूवी है। तो चलिए सुनते हैं प्यारा सा गीत जो फिल्माया गया है राजेश खन्ना।

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे पैसा सावन मूवी से। ये मूवी आई थी 1981 में। गाना है मेघारे मेघारे। लता मंगेशकर और सुरेश वाडकर जी की आवाज में अगला सॉन्ग आपके लिए, जो फिल्माया गया है जितेंद्र और मौसमी चटर्जी के ऊपर।

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे, किसी नजर को तेरा आज भी इंतजार है। डिम्बल कपाड़िया और सुरेश ओबेरॉय के ऊपर फिल्माया गया ये सॉन्ग, और इसी गाने के साथ मनीषा अलविदा कहती है, फिर आऊंगी आपके दिल को छूने कुछ सदाबहार नगमों के साथ, और तब तक आप भी खुश रहिए और अपनों को भी खुश रखने की कोशिश कीजिए, क्या पता कल हो ना हो। गुड न

0: नमस्कार दोस्तों, आपने ट्यून किया है पेणुथोनी 90.4 KLE कलसो और यादों के बारात में मनीषा आपका दिल से स्वागत करती है। दोस्तों, यादों के बारात में हम कुछ ऐसे नगमे सुनेंगे जो आपके दिल के करीब थे, जो भूले बिसरे गीत रहने के बावजूद भी आप कभी भूल न पाए। तो चलिए, आपकी यादों को ताजा करने के लिए मनीषा लेके आई है यादों की बारात।
1: यादों

अगला गाना हम सुनेंगे शीशा हो या दिल हो आखिर टूट जाता है, लता मंगेशकर जी की आवाज में एक खूबसूरत सा सॉन्ग जो है आशा मूवी से। ये मूवी आई थी 1980 में जिसमें अभिनय किया है जितेंद्र और रीना रॉय ने। तो चलिए सुनते खूबसूरत सा गीत शीशा हो या दिल हो आखिर टूट जाता है।

यादों की भारत में अगला गाना मैं आपको सुनवाने जा रही हूँ, जो है दिल मूवी से। ये मूवी आई थी 1990 में। गाने की बोल है मुझे नींद ना आए। आमिर खान और माधुरी दीक्षित का अभिनय, अनुराधा पौडवाल और उदित नारायण की आवाज में एक खूबसूरत सा नगमा आपके लिए, जिसको म्यूजिक दिया है आनंद श्रीवास्तव और मिलिंद श्रीवास्तव जी ने।

थोड़ी 90.4 के LE कनसो पे आप ट्यून है, यादों के बारात हमारा प्रोग्राम चल रहा है और अगला गाना मैं आपको सुनवाने जा रही हूँ जो है हीरो मूवी से। 1983 में ये मूवी आई थी जो बहुत ही सुपरहिट रही, इसके गाने भी बहुत ही खूबसूरत है। इसी में से एक गाना हम सुनेंगे जो है तू मेरा हीरो है।

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे जब कोई बात बिगड़ जाए। यह है जुर्म मूवी का गाना और विनोद खन्ना और मीनाक्षी शेषाद्री का अभिनय। कुमार सानू की आवाज में अगला गीत आपके लिए।

करते रहे सारी रात हम। किशोर कुमार और लता मंगेशकर जी की आवाज में एक खूबसूरत सा नगमा जो है आपकी कसम से, 1974 की मूवी है, तो चलिए सुनते हैं प्यारा सा गीत जो फिल्माया गया है राजेश खन्ना

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे पैसा सावन मूवी से। ये मूवी आई थी 1981 में। गाना है मेघारे मेघारे। लता मंगेशकर और सुरेश वाडकर जी की आवाज में अगला सॉन्ग आपके लिए, जो फिल्माया गया है जितेंद्र और मौसमी चटर्जी के ऊपर।

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे, किसी नजर को तेरा आज भी इंतजार है। डिम्बल कपाड़िया और सुरेश ओबेरॉय के ऊपर फिल्माया गया ये सॉन्ग, और इसी गाने के साथ मनीषा अलविदा कहती है, फिर आऊंगी आपके दिल को छूने कुछ सदाबहार नगमों के साथ, और तब तक आप भी खुश रहिए और अपनों को भी खुश रखने की कोशिश कीजिए, क्या पता कल हो ना हो। गुड नाइट।

नमस्कार दोस्तों, आपने ट्यून किया है पेणु थोड़ी 90.4 KLE कलसो और यादों की बारात में मनीषा आपका दिल से स्वागत करती है। दोस्तों, यादों की बारात में हम कुछ ऐसे नगमे सुनेंगे जो आपके दिल के करीब थे, जो भूले बिसरे गीत रहने के बावजूद भी आप कभी भूल न पाए। तो चलिए, आपकी यादों को ताजा करने के लिए मनीषा लेके आई है यादों की बारात।

जिसमें पहला गाना हम सुनेंगे तेरे मेरे बीच में कैसा है ये बंधन, एक दूजे के लिए मूवी का ये सॉन्ग है। कमल हसन और रति अग्निहोत्री पे फिल्माया गया ये गीत तेरे मेरे बीच में कैसा है ये बंधन अनजाना। ये फिल्म आई थी 1981 में। गाने को आवाज दी है लता मंगेशकर और एस पी बाल सुब्रमण्यम जी ने। तो चलिए सुनते हैं प्यारा सा और सुपरहिट सॉन्ग।

अगला गाना हम सुनेंगे शीशा हो या दिल हो आखिर टूट जाता है, लता मंगेशकर जी की आवाज में एक खूबसूरत सा सॉन्ग जो है आशा मूवी से। ये मूवी आई थी 1980 में जिसमें अभिनय किया है जितेंद्र और रीना रॉय ने। तो चलिए सुनते खूबसूरत सा गीत शीशा हो या दिल हो आखिर टूट जाता है।

यादों की भारत में अगला गाना मैं आपको सुनवाने जा रही हूँ, जो है दिल मूवी से। ये मूवी आई थी 1990 में। गाने की बोल है मुझे नींद ना आए, आमिर खान और माधुरी दीक्षित का अभिनय, अनुराधा पौडवाल और उदित नारायण की आवाज में एक खूबसूरत सा नगमा आपके लिए, जिसको म्यूजिक दिया है आनंद श्रीवास्तव और मिलिंद श्रीवास्तव जी ने।

चल रहा है। और अगला गाना मैं आपको सुनवाने जा रही हूँ जो है हीरो मूवी से। 1983 में ये मूवी आई थी जो बहुत ही सुपरहिट रही। इसके गाने भी बहुत ही खूबसूरत है। इसी में से एक गाना हम सुनेंगे जो है तू मेरा हीरो है।

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे जब कोई बात बिगड़ जाए। यह है जुर्म मूवी का गाना और विनोद खन्ना और मीनाक्षी शेषाद्री का अभिनय। कुमार सानू की आवाज में अगला गीत आपके लिए।

रहे सारी रात हम। किशोर कुमार और लता मंगेशकर जी की आवाज में एक खूबसूरत सा नगमा जो है आपकी कसम से, 1974 की मूवी है, तो चलिए सुनते हैं प्यारा सा गीत जो फिल्माया गया है राजेश खन्ना

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे पैसा सावन मूवी से। ये मूवी आई थी 1981 में। गाना है मेघारे मेघारे। लता मंगेशकर और सुरेश वाडकर जी की आवाज में अगला सॉन्ग आपके लिए, जो फिल्माया गया है जितेंद्र और मौसमी चटर्जी के ऊपर।

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे, किसी नजर को तेरा आज भी इंतजार है। डिम्बल कपाड़िया और सुरेश ओबेरॉय के ऊपर फिल्माया गया ये सॉन्ग, और इसी गाने के साथ मनीषा अलविदा कहती है, फिर आऊंगी आपके दिल को छूने कुछ सदाबहार नगमों के साथ, और तब तक आप भी खुश रहिए और अपनों को भी खुश रखने की कोशिश कीजिए, क्या पता कल हो ना हो। गुड नाइट।

नमस्कार दोस्तों, आपने ट्यून किया है पेणुथोनी 90.4 KLE कलसो और यादों की बारात में मनीषा आपका दिल से स्वागत करती है। दोस्तों, यादों की बारात में हम कुछ ऐसे नगमे सुनेंगे जो आपके दिल के करीब थे, जो भूले बिसरे गीत रहने के बावजूद भी आप कभी भूल न पाए। तो चलिए, आपकी यादों को ताजा करने के लिए मनीषा लेके आई है यादों की बारात।

जिसमें पहला गाना हम सुनेंगे तेरे मेरे बीच में कैसा है ये बंधन, एक दूजे के लिए मूवी का ये सॉन्ग है। कमल हसन और रति अग्निहोत्री पे फिल्माया गया ये गीत तेरे मेरे बीच में कैसा है ये बंधन अनजाना। ये फिल्म आई थी 1981 में। गाने को आवाज दी है लता मंगेशकर और एस पी बाल सुब्रमण्यम जी ने। तो चलिए सुनते हैं प्यारा सा और सुपरहिट सॉन्ग।

अगला गाना हम सुनेंगे शीशा हो या दिल हो आखिर टूट जाता है, लता मंगेशकर जी की आवाज में एक खूबसूरत सा सॉन्ग जो है आशा मूवी से। ये मूवी आई थी 1980 में जिसमें अभिनय किया है जितेंद्र और रीना रॉय ने। तो चलिए सुनते खूबसूरत सा गीत शीशा हो या दिल हो आखिर टूट जाता है।

यादों की बारात में अगला गाना मैं आपको सुनवाने जा रही हूँ, जो है दिल मूवी से। ये मूवी आई थी 1990 में। गाने की बोल है, मुझे नींद ना आए। आमिर खान और माधुरी दीक्षित का अभिनय, अनुराधा पौडवाल और उदित नारायण की आवाज़ में खूबसूरत सा नगमा आपके लिए, जिसको म्यूजिक दिया है आनंद श्रीवास्तव और मिलिंद श्रीवास्तव जी ने।

थोड़ी 90.4 के LE कनसू पे आप ट्यून है, यादों के बारात हमारा प्रोग्राम चल रहा है और अगला गाना मैं आपको सुनवाने जा रही हूँ जो है हीरो मूवी से। 1983 में ये मूवी आई थी जो बहुत ही सुपरहिट रही। इसके गाने भी बहुत ही खूबसूरत है। इसी में से एक गाना हम सुनेंगे जो है तू मेरा हीरो है।

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे जब कोई बात बिगड़ जाए। यह है जुर्म मूवी का गाना और विनोद खन्ना और मीनाक्षी शेषाद्री का अभिनय। कुमार सानू की आवाज में अगला गीत आपके लिए।

रहे सारी रात हम। किशोर कुमार और लता मंगेशकर जी की आवाज में एक खूबसूरत सा नगमा जो है आपकी कसम से, 1974 की मूवी है, तो चलिए सुनते हैं प्यारा सा गीत जो फिल्माया गया।

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे पैसा सावन मूवी से। ये मूवी आई थी 1981 में। गाना है मेघारे मेघारे। लता मंगेशकर और सुरेश वाडकर जी की आवाज में अगला सॉन्ग आपके लिए, जो फिल्माया गया है जितेंद्र और मौसमी चटर्जी के ऊपर।

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे, किसी नजर को तेरा आज भी इंतजार है। डिम्बल कपाड़िया और सुरेश ओबेरॉय के ऊपर फिल्माया गया ये सॉन्ग। और इसी गाने के साथ मनीषा अलविदा कहती है, फिर आऊंगी आपके दिल को छूने कुछ सदाबहार नगमों के साथ, और तब तक आप भी खुश रहिए और अपनों को भी खुश रखने की कोशिश कीजिए, क्या पता कल हो ना हो। गुड नाइट।

नमस्कार दोस्तों, आपने ट्यून किया है पेणुथोनी 90.4 KLE कलसो और यादों की बारात में मनीषा आपका दिल से स्वागत करती है। दोस्तों, यादों की बारात में हम कुछ ऐसे नगमे सुनेंगे जो आपके दिल के करीब थे, जो भूले बिसरे गीत रहने के बावजूद भी आप कभी भूल न पाए। तो चलिए, आपकी यादों को ताजा करने के लिए मनीषा लेके आई है यादों की बारात।

जिसमें पहला गाना हम सुनेंगे तेरे मेरे बीच में कैसा है ये बंधन, एक दूजे के लिए मूवी का ये सॉन्ग है। कमल हसन और रति अग्निहोत्री पे फिल्माया गया ये गीत तेरे मेरे बीच में कैसा है ये बंधन अनजाना। ये फिल्म आई थी 1981 में। गाने को आवाज दी है लता मंगेशकर और एस पी बाल सुब्रमण्यम जी ने। तो चले सुनते प्यारा सा और सुपरहिट सॉन्ग।

अगला गाना हम सुनेंगे शीशा हो या दिल हो आखिर टूट जाता है, लता मंगेशकर जी की आवाज में एक खूबसूरत सा सॉन्ग जो है आशा मूवी से। ये मूवी आई थी 1980 में जिसमें अभिनय किया है जितेंद्र और रीना रॉय ने। तो चलिए सुनते खूबसूरत सा गीत शीशा हो या दिल हो आखिर टूट जाता है।

यादों की भारत में अगला गाना मैं आपको सुनवाने जा रही हूँ, जो है दिल मूवी से। ये मूवी आई थी 1990 में। गाने की बोल है मुझे नींद ना आए, आमिर खान और माधुरी दीक्षित का अभिनय, अनुराधा पौडवाल और उदित नारायण की आवाज में खूबसूरत सा नगमा आपके लिए, जिसको म्यूजिक दिया है आनंद श्रीवास्तव और मिलिंद श्रीवास्तव जी ने।

थोड़ी 90.4 के LE कनसूबे आप ट्यून है, यादों के बारह हमारा प्रोग्राम चल रहा है और अगला गाना मैं आपको सुनवाने जा रही हूँ जो है हीरो मूवी से। 1983 में ये मूवी आई थी जो बहुत ही सुपरहिट रही। इसके गाने भी बहुत ही खूबसूरत है। इसी में से एक गाना हम सुनेंगे जो है तू मेरा हीरो है।

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे जब कोई बात बिगड़ जाए। यह है जुर्म मूवी का गाना और विनोद खन्ना और मीनाक्षी शेषाद्री का अभिनय। कुमार सानू की आवाज में अगला गीत आपके लिए।

है सारी रात हम। किशोर कुमार और लता मंगेशकर जी की आवाज में एक खूबसूरत सा नगमा जो है आपकी कसम से, 1974 की मूवी है। तो चलिए सुनते हैं प्यारा सा गीत जो फिल्माया गया है राजेश खन्ना

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे पैसा सावन मूवी से। ये मूवी आई थी 1981 में। गाना है मेघारे मेघारे। लता मंगेशकर और सुरेश वाडकर जी की आवाज में अगला सॉन्ग आपके लिए, जो फिल्माया गया है जितेंद्र और मौसमी चटर्जी के ऊपर।

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे, किसी नजर को तेरा आज भी इंतजार है। डिम्बल कपाड़िया और सुरेश ओबेरॉय के ऊपर फिल्माया गया ये सॉन्ग, और इसी गाने के साथ मनीषा अलविदा कहती है, फिर आऊंगी आपके दिल को छूने कुछ सदाबहार नगमों के साथ, और तब तक आप भी खुश रहिए और अपनों को भी खुश रखने की कोशिश कीजिए, क्या पता कल हो ना हो। गुड नाइट।

नमस्कार दोस्तों, आपने ट्यून किया है पेरुथोनी 90.4 KLE कलसो और यादों की बारात में मनीषा आपका दिल से स्वागत करती है। दोस्तों, यादों की बारात में हम कुछ ऐसे नगमे सुनेंगे जो आपके दिल के करीब थे, जो भूले बिसरे गीत रहने के बावजूद भी आप कभी भूल न पाए। तो चलिए, आपकी यादों को ताजा करने के लिए मनीषा लेके आई है यादों की बारात।

जिसमें पहला गाना हम सुनेंगे तेरे मेरे बीच में कैसा है ये बंधन। एक दूजे के लिए मूवी का ये सॉन्ग है। कमल हसन और रति अग्निहोत्री पे फिल्माया गया ये गीत तेरे मेरे बीच में कैसा है ये बंधन अनजाना। ये फिल्म आई थी 1981 में। गाने को आवाज दी है लता मंगेशकर और एस पी बाल सुब्रमण्यम जी ने।

अगला गाना हम सुनेंगे शीशा हो या दिल हो आखिर टूट जाता है, लता मंगेशकर जी की आवाज में एक खूबसूरत सा सॉन्ग जो है आशा मूवी से। ये मूवी आई थी 1980 में जिसमें अभिनय किया है जितेंद्र और रीना रॉय ने। तो चलिए सुनते हैं खूबसूरत सा गीत शीशा हो या दिल हो आखिर टूट जाता है।

यादों की भारत में अगला गाना मैं आपको सुनवाने जा रही हूँ, जो है दिल मूवी से। ये मूवी आई थी 1990 में। गाने की बोल है मुझे नींद ना आए। आमिर खान और माधुरी दीक्षित का अभिनय, अनुराधा पौडवाल और उदित नारायण की आवाज में खूबसूरत सा नगमा आपके लिए, जिसको म्यूजिक दिया है आनंद श्रीवास्तव और मिलिंद श्रीवास्तव जी ने।

वेणुधुनी 90.4 के LE कनसू पे आप ट्यून है। यादों के बारात हमारा प्रोग्राम चल रहा है और अगला गाना मैं आपको सुनवाने जा रही हूँ जो है हीरो मूवी से। 1983 में ये मूवी आई थी जो बहुत ही सुपरहिट रही। इसके गाने भी बहुत ही खूबसूरत है। इसी में से एक गाना हम सुनेंगे जो है तू मेरा हीरो है।